0: पालन बच्चे और उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कोई भी आंच ना देना, ये हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहले।
1: नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए, हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे।
2: And moving on, Bollywood superstar Salman Khan has thrown his weight behind the students' protest over the Paper League controversy. In a lengthy social media post, Salman Khan praised students for what he called a peaceful and courageous and determined movement, demanding a better education system. Calling Paper League a serious issue, he even urged that the protest should not be politicized and said that the credit solely belongs to the students. Salman Khan also expressed hope that the government would support reforms, adding that education should become the country's biggest trend and that India should aspire to become a global education hub.

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
2: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
3: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
4: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
5: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
6: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
7: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
13: रियली
12: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
6: या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी। योर फ्रेंड सेड ये ले ले, we said maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: What seems settled?
13: Well, it's release day for Jananayagan, and if the scenes outside the theatres are anything to go by, Thalapathy Vijay's star power, that remains absolutely intact. From towering shouts and milk abhishekams to drums, dancing, fans queuing through the night, cinema halls this morning have turned into celebration grounds quite visibly. For many fans, you know, this isn't just another release. It's an emotional farewell to a superstar they've grown up watching. All eyes are now on the film's box office performance as what could be Vijay's last big screen outing opens to an overwhelming response. Here's how fans in Chennai and Mumbai are reacting.
14: Day has finally arrived. Jananayagan is releasing across screens in the country, and I'm at iconic Rohini Theatre in Chennai, where as you can see huge cutouts of the film as well as Vijay has been put out. This was a film that was supposed to be released before he started his active career in politics. This was supposed to be released 6 to 7 months before today, but as fate would have it, it is releasing after Vijay became the sitting chief minister of Tamil Nadu, and fans have already started gathering here. This is a festival of sorts for several of these fans. Wanting to watch that first day for show. நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க?
15: Actually நான் மதுரையில இருந்து வரேன். இவர் பாத்தீங்கனா மலேசியால இருந்து வராரு.
14: மலேசியா?
15: மலேசியாமா.
16: I am coming from Malaysia.
14: Okay, so you've been standing here since when?
15: நைட்ல இருந்து இருந்தோம் ஆக்சுவலி. அப்புறம் செலிபிரேஷன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இடையில. அப்புறம் போயிட்டு 4 o'clock வரோம். நிறைய பேர் நைட்ல இருந்து இங்கே தான் இருக்காங்க. தூக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ணெல்லாம் இருக்கு.
16: 10 மணிலிருந்து எனக்குன்னா செலிபிரேஷன் ஆரம்பிக்கலையா? என்ன காரணம் தெரிய மாட்டேங்குது.
17: ஏமாற்றம், பெரிய
16: சிஎம் படுத்துக்க மாட்டியா? இப்படி பண்றாங்க, ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது.
14: All these fans want to enter the theater, they want to celebrate, they want to do the puja and rituals. That's something they've been waiting

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस, मोदो एलीट।
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: police officer caught on camera striking a woman, and this is the action. This is the punishment. If protesters who resorted to violence must face the law, why should the standard be any different for the police? What's of course questionable at this point is if it was even the protesters who were armed and who had taken on the police at that point, or were they just antisocial elements who were trying to foment trouble? That answer remains unanswered, but the focus today is on the man on your screen. The uniform gives you authority. It does not put you above accountability, and that is something every person in uniform must remember. Because the law cannot be enforced on one side of that barricade and diluted on the other. We'll talk more about this in the show. A quick check on the headlines at this hour. NDA versus India bloc showdown escalates in Parliament over NEET paper leak row. NDA MP stage protest against opposition. India bloc MPs stage counter protest. Massive sloganeering witnessed. Kargis says discussion in house without resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. Prime Minister Modi's big move on paper leaks assures students on paper leak. PM vows to protect students' future, says paper leak mafia will not be spared. Leader of opposition, Lok Sabha Rahul Gandhi, hits back. Late night violence near Jantar Mantar, stones pelted at police. Several personnel were beaten up. Delhi ACP inspector injured in the attack.
1: पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया, हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप पर्सनल में भी बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है। नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छा संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है, और साथ में यह भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर

0: की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज, आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तंता जी।
1: महोदय आपकी अनुमति से मैं संस्कृति कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों पर सदन की संपर्क करता हूँ।
0: आइटम नंबर 3 महासचिव।
2: A message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024.
0: Item number 4, Sri Bala Sariji.
3: I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50. And 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4.
0: Item number 5, Sri Biplab Kumar Dev.
4: Sir, I rise to present the 3rd report in Hindi or English version of the Committee on Absence member for the sitting of the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you.
0: Item number 6, Sri B. Mehtab Ji.
5: Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025, of the Standing Committee on Finance, as listed against my name in serial number 6 in today's list of business.
0: Item number 7, Srimati K. Kanemuji Ji.

0: with the leader of opposition Rajya Sabha and the Congress president Mallikarjun Kharge. He's upping the ante. He's attacked the center. Kharge has said Dharmendra Pradhan must resign. The Prime Minister's statement is inflammatory. We have a remark from him. Let's listen in.
1: आगे आए स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ उनका एजुकेशन पहला लीजिए डिस्कशन शुरू कीजिए हम तैयार है डिस्कशन के लिए इस्तीफा जरूर होना चाहिए
0: Himanshu is back with us live on the story. Himanshu, on expected lines, we've just heard from Mallikarjun Kharge. What is the Congress's game plan? Can they also be seen as stalling Parliament at a time when the government has said they're ready for discussion? What is their game plan? Because they've actually dug in their heels when it comes to the Education Minister and they don't want to settle for anything less than his resignation as of now.
2: That's right. See, the Congress strategy is very simple and very straight. You saw on day one of the monsoon session of Parliament, Rahul Gandhi being very aggressive on this issue, and both inside Lok Sabha and Raj Sabha, out on the streets, Rahul Gandhi actually has led this protest. And Congress, of course, had planned for this. It is very clear. You see, the kind of flash protests that we have seen are all very well planned. It looks that it is sudden that Rahul Gandhi goes to Akbar Road and sits before Prime Minister. Minister's residence, but behind that there is a lot of political planning behind this, and perhaps the Congress leadership believes that government is defensive on this case largely because there is already a protest going on for last 34 days at Jantar Bantar, and there are thousands of students who have taken part, and they are getting support from different segments of the civil society as well. And now we have seen that protests are not only limited to Jantar Bantar or Delhi, but they have now spilled over, and we have seen protests in different parts of Bihar, Maharashtra, etc. And Congress leadership perhaps believes that this is becoming a national issue, and if they keep flagging this issue, perhaps they will get better political mileage, they will get better media space, and there'll be more talk of the fact that Congress is serious on an issue which concerns lakhs of students in this country. That is exactly the reason why we see again and again Congress disrupting the proceedings in both Lok Sabha and Raj Sabha and insisting that first Education Minister must resign before a debate can be initiated. But there is another important issue which has not been very widely reported. That is the differences that exist between the Treasury benches and the opposition on the modalities of the debate that is being discussed in Parliament, in both Lok Sabha and Raj Sabha. We do know, and Priyanka Gandhi and Shashi Tharoor have made it very clear, and today when Rahul Gandhi met Lok Sabha Speaker Akhilesh Yadav, Supriya Sule were also present, that the opposition MPs are demanding that there should be a debate under an adjournment motion, which is a motion as per parliamentary procedure, which is usually admitted when there is a matter of urgent national importance and significance. And it often implies, once the notice is admitted, that there will be some kind of a censure of the government. Because remember, in this context, if the series of opposition leaders speak on this issue, of course, there are many issues and shortcomings in the exam which led to the paper leak, which will then be put up before the House. And that could imply some kind of a censure of the government. And that government, of course, is not ready to accept the opposition demand. In Raj Sabha, for the last 2 days, I've seen Mallikarjun Kharge and several Congress MPs had also given notices that they want a debate under Rule 267. It is important to understand that 267 debate often ends and there is a provision for voting at the end of the debate. So the opposition also wants to expose the fact that there are not non-NDA parties also which are with them on this issue.
0: All right, thanks for joining me live there. We have some news coming in. After Bollywood actor Salman Khan, now Alia Bhatt has come out in support of the students. Alia Bhatt in a post has said, courage of students humbles me and says for the students by the students. I have Anuj joining me live. Anuj, just take us through her post. This comes, in fact, 3 days after the protest turned violent. Many also ask at this point, why is Bollywood reacting now?
3: It comes 3 days after the protest turned violent, but according to the protesters, it has come a month later since the protest was started. We know that, you know, we are already over 20 days into this protest, especially when the hunger strike began. And for a majority part of this entire protest, a lot of celebrities, not just actors, but celebrities across the board have maintained their silence. Now, if you look at Alia Bhatt's post, one can see that she is, you know, it looks like she's completely supporting the students, making it very clear that students are the future of this country, and it becomes a duty of everyone to make sure that they are looked after. And this is literally hours after Salman Khan also tweeted and made a post yesterday on his social media platforms. But as I said earlier, there are the support from the Hindi film industry or from the sporting world is welcomed as far as the protesters' view is concerned. But on repeated attempts, especially here in Mumbai as well, when we speak to the protesters, we understand that there is a bit of disgruntledness that they have against the celebrities, because for the majority of the time there was nothing, no acknowledgement of this protest. If you let alone a few selected celebrities, majority of them have only chosen to speak about it when it became an issue of national importance. So that clearly is an update, but to their relief, to the protesters' relief, a post now has been made by Alia Bhatt exactly 12 to 14 hours after Salman Khan also tweeted about this entire issue.
0: All right, thanks for joining me there. Talking about Salman Khan, Bollywood superstar Salman Khan is the latest film personality. Just before, Alia Bhatt also came out and tweeted to back the ongoing Cockroach Janata Party protest in the national capital. In an Instagram post, Salman Khan Wednesday praised the students for participating in the protest peacefully and called them courageous and brave. Calling paper leaks a serious issue, he urged that the protest should not be politicized and said the credit belongs solely to the students. Salman Khan also expressed hope that the government would support reforms. He ended his post saying education in the country should become a fashion trend so that students from abroad come to India to study. The ruckus over the debate on the NEET issue continues in Parliament. The opposition created a ruckus in the lower house of Parliament with several MPs trooping into the well of the house and raising slogans, disrupting proceedings. As the protests intensified, the chair repeatedly appealed to members to maintain decorum and allow the house to function. Union Minister Kiran Rijiju said that opposition is trying to politicize students' issue for their own benefit. However, Mallikarjun Kharge announced that there will be no discussion before Education Minister's resignation. NDA MPs staged a demonstration at the Makar Dwar, accusing the opposition of disrupting Parliament. The opposition, however, hit back with a counter-protest inside the Parliament complex. Opposition MPs accused the centre of evading accountability on issues.
4: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया कांग्रेस पार्टी से भी किया और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने एक कंडीशन लगाना शुरू किया फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे
1: सरकार आगे आए स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके मां बाप परेशान हैं इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार है डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
5: नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है, स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है पीटा है उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इसकी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनकी, इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है, तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं, ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए।
1: आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें चिंता है, हम फास्ट ट्रैक रूट बनाएंगे, लेकिन डेढ़ महीने से प्रधानमंत्री क्यों है? सवाल है धर्मेंद्र प्रधान को, इस्तीफा लो, बच्चों से माफी मांगो और दिल्ली पुलिस के दरिंदों को सजा दो जिन्होंने बच्चों को मारा है।
6: मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पूरे मामले पर, पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही गठन करने की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मूल मांगे हैं छात्रों की उसको तो एड्रेस ही नहीं किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, माफी की बात हो, क्या आप जवाब दें?
7: छात्र सल्यूशन चाहते हैं और छात्रों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए जो दोषी है उनको दंडित किया जाए इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मंजूरी दी है, संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ा कदम छात्रों के हित में, छात्रों की मांगों को देखते हुए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया गया, इसके लिए छात्रों को मैं बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। जहां तक विपक्ष की आपने बात कही, आज युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। युवा क्या चाहते हैं? एक क्लीन ट्रांसपेरेंट ये जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उसी के लिए एग्जाम्स निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ये कदम सरकार ने उठाए और नीट का एग्जाम बहुत जल्दी वापस करवाया और सफलता।
6: सर, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट, PM has also made a statement on this issue. Why opposition is not ready
8: that
6: for
8: statement
6: debate?
8: Is absolutely hollow, too little too late. The demand of the youth and the demand of students is very clear, and we are as a main opposition party articulating the same demand. We want a resignation from education minister Dharmendra Pradhan. We want government to apologize to the student and the youth of this country on how they handled and brutal force, police force was applied on these students in Delhi, we all saw, and we want those responsible behind the application of this brutal police force to be punished. It's very clear, students are also demanding that, and we are also demanding that, and he has not said a single word on these demands. And it is high time that government wakes up and understands the sentiment of the nation now.
6: But how do you react on whatever he has addressed, that the government is constituting fast track courts and culprits will not be
8: this is fast track?
9: आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई, और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है।
10: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
0: As the political battle over paper leaks escalates, Prime Minister Modi has announced a major crackdown, promising fast-track courts and stringent punishment for those behind exam paper leaks, calling the future of students the government's top priority. The PM said those trying to destroy the aspirations of India's youth will not be spared and directed authorities to take all necessary steps to protect students' interests. The announcement has now triggered a sharp political face-off, with Rahul Gandhi accusing Prime Minister Modi of harming the future of India's youth, demanding the sacking of Education Minister Dharmendra Pradhan, an apology to students, and action against those accused of assaulting protesters.
11: Modi ji, Bharatiya Rajneet gawah hai ki jab kabhi kisi mantri ke vibhag mein ye naubat aa jaye कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में।
12: If Prime Minister genuinely feels nothing is more important than future of the youth, if Dharmendra Pradhan is not more important than future of the youth, Prime Minister should immediately, without wasting 1 minute, should ask Dharmendra Pradhan to step down from his cabinet. That is the first and foremost thing he should do. If he doesn't do that, if he is making all the protection and giving him the opportunity to continue in his cabinet, what he says will not have the value of even a waste paper. Modi will be defined by the students, by the youth, as mockery of democratic Indians.
13: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है। इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किन की सजाएं हुई, हुआ कोई? Nothing has been done so far.
14: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
15: मंत्री ने ये कहा है कि युवाओं का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है, नीट चोरी मामले में जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, कैसे देखती हैं?
16: देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ दोषी का डेफिनेशन क्या है? छात्र तो नीचे के दो चार लोगों को दोषी सिर्फ नहीं मान रही है, वो तो ऊपर के लोगों को दोषी मान रही है। कई लोगों के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अब रेजिग्नेशन का पहले एक ही व्यक्ति का मांगा जा रहा था, अब उसका दायरा बड़ा हो गया है। हम लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे, मैं कल भी गई, परसों भी गई, तो मैंने देखा कि अब वो लोग और भी कई लोगों के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो ये बताइए कि दोषी के दायरे में कौन कौन आएगा?
15: सदन में भी गतिरोध बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, क्या उससे लगता है कि कुछ डेडलॉक खत्म होगा, चर्चा पर आप लोग हिस्सा लेंगे?
16: देखिए, अभी अपोजिशन की एक मीटिंग होगी खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें वो लोग तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या है, हम लोग छात्रों के साथ हैं।
4: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स नोबडी बिलीव इन दिस वर्ड्स नाउ अडेज़। नोबडी बिलीव इन दिस वर्ड दिस क्रेडिबिलिटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट।

0: आदर्श कृपा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ उनका रेजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
1: दिस आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, थिंक अबाउट इट। चिल्ड्रन आर प्रोटेस्टिंग, दे आर ऑल यंग, थिंक अबाउट इट। They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this?
0: आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें चिंता है, हम फास्ट ट्रैक रूट बनाएंगे, लेकिन डेढ़ महीने से प्रधानमंत्री सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, बच्चों से माफी मांगो और दिल्ली पुलिस के दरिंदों को सजा दो जिन्होंने बच्चों को मारा है।
2: मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पूरे मामले पर, पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही गठन करने की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मूल मांगे हैं छात्रों की उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, माफी की बात हो, क्या आप जवाब दें?
3: छात्र सल्यूशन चाहते हैं और छात्रों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए जो दोषी है उनको दंडित किया जाए इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मंजूरी दी है, संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ा कदम छात्रों के हित में, छात्रों की मांगों को देखते हुए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया गया, इसके लिए छात्रों को मैं बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। जहां तक विपक्ष की आपने बात कही, आज युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। युवा क्या चाहते हैं? एक क्लीन ट्रांसपेरेंट ये जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उसी के लिए एग्जाम्स निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ये कदम सरकार ने उठाए और नीट का एग्जाम बहुत जल्दी वापस करवाया और सफलता।
4: आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है।
5: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
6: Well, massive protests happening outside the Makar Dwar of the Parliament building. Now the face off can be seen between the NDA MPs and the India Bloc MPs over here. And as you can see in the visuals just behind me are these MPs on the right are the NDA Bloc MPs and they are protesting against Rahul Gandhi for their demonstration on the Prime Minister's residence. On the left is the India Bloc MPs and the entire protest is led by Sonia Gandhi. There you can see in the visual Sonia Gandhi can be clearly seen and accountability not brutality is the placard that they are holding in their hands. They are demanding resignation of Dharmendra Pradhan.

0: been vociferously fighting against NEET right from introduction in the year 2010, when Mr. Kalaignar Karunanidhi, who was the then Chief Minister, and I at that point of time was Additional Advocate General, we went to the court and we got a stay. And till 2016, the NEET was not there in our state. In 2016, when Mr. Modi came to power, he brought an amendment and he reintroduced this NEET. And since there was 1 year, exemption, from 2017 till today, NEET operates. In Tamil Nadu, the successive governments brought legislation to dispense with NEET. In fact, when Mr. Stalin was the Chief Minister, he brought a bill to exempt NEET from a state of Tamil Nadu. But that bill, you know, the governor did not give any approval.
1: So you want overall the NEET examination only to be abolished? The NEET exam should not be conducted, is what the DMK has been, you know, stating. And they will be still continuing to hold their protest in the parliament today. Now, we have to see that, you know, Vedika, when this logjam in the parliament ends, will the opposition get ready for a discussion within the parliament, or will there be adjournments in the pattern we have been witnessing so far?
2: Thanks for joining me there. Well, as the political battle over paper leaks escalates, Prime Minister Modi has announced a major crackdown, promising fast-track courts and stringent punishment for those behind exam paper leaks, calling the future of students the government's top priority. The Prime Minister said those trying to destroy the aspirations of India's youth will not be spared and directed authorities to take all necessary steps to protect students' interests. The announcement has now triggered a sharp political face-off, with Rahul Gandhi accusing Prime Minister Modi of harming the future of India's youth, demanding the sacking of Education Minister Dharmendra Pradhan, an apology to students, and action against those accused of assaulting the protesters.
3: ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है दूसरे को किए नहीं वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वो ही देना चाहिए तो उसके बजाय दूसरा और क्या है मंगल मिलन उसमें क्या तकरीर करते हो आप उसमें ये तकरीर करते हो जाओ युवाओं को उठाओ समझाओ इसके बारे में यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो यानी एजिटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीस को खुल के उन्होंने बोला
4: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स नाउडेज नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड दिस क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिसअपीयर्ड नोबडी इज फॉलोइंग मी बिकॉज नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू टेल रिमूव द धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री देन ही हैज टू टॉक टू द स्टूडेंट्स
5: मोदी जी भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना वो भी कहते थे कि जब जांच होगी जांच के बाद जो दोषी होगा मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए
6: इट इज एब्सोल्युटली हॉलो टू लिटिल टू लेट द डिमांड ऑफ द यूथ एंड द डिमांड ऑफ स्टूडेंट इज वेरी क्लियर एंड वी आर एज अ मेन ऑपोजिशन पार्टी आर्टिकुलेटिंग द सेम डिमांड वी वॉन्ट अ रेजिग्नेशन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान We want government to apologize to the student and the youth of this country on how they handled and brutal force, police force was applied on these students in Delhi, we all saw. And we want those responsible behind the application of this brutal police force to be punished. It's very clear. Students are also demanding that and we are also demanding that.
7: If Prime Minister genuinely feels nothing is more important than future of the youth, if Dharmendra Pradhan is not more important than future of the youth, Prime Minister should immediately, without wasting 1 minute, should ask Dharmendra Pradhan to step down of his, from his cabinet. That is the first and foremost thing he should do. If he doesn't do that, if he is making all the protection and giving him the opportunity to continue in his cabinet, what he says will not have the value of even a waste paper. MODI, Modi will be defined by the students, by the youth as mockery of democratic Indians.
8: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है. इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए. कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? Nothing has been done so far.
9: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा. हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा. अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है. प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
10: मंत्री ने ये कहा है कि युवाओं का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है. नीट चोरी मामले में जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, कैसे देखती हैं?
11: देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ दोषी का डेफिनेशन क्या है? छात्र तो नीचे के दो चार लोगों को दोषी सिर्फ नहीं मान रही है, वो तो ऊपर के लोगों को दोषी मान रही है. कई लोगों के रेजिग्नेशन की मांग कर रही है. अब रेजिग्नेशन का पहले एक ही व्यक्ति का मांगा जा रहा था, अब उसका दायरा बड़ा हो गया है. हम लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे. मैं कल भी गई, अब परसों भी गई, तो मैंने देखा कि अब वो लोग और भी कई लोगों के इस्तीफे की मांग कर रही है. तो ये बताइए कि दोषी के दायरे में कौन कौन आएगा?
10: सदन में भी गतिरोध बना हुआ है. प्रधानमंत्री ने जिस तरह के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, क्या उससे लगता है कि कुछ डेडलॉक खत्म होगा? आप चर्चा पर आप लोग हिस्सा लेंगे?
11: देखिए, अभी अपोजिशन की एक मीटिंग होगी खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें वो लोग तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. लेकिन आप जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या है, हम लोग छात्रों के साथ हैं.
12: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके. लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं. पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं. आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है. पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए.
2: In news just coming in, according to sources, the CBI will soon be filing a charge sheet against the 13 accused arrested in the NEET paper leak case. All 13 accused arrested by the CBI in connection with the paper leak case are currently in jail. The CBI has gathered solid evidence, according to sources, against all of them, and the charge sheet will soon be filed in court. My colleague Akhil joins me live. Akhil, what are the details you can share with us? This news coming in after the post by the Prime Minister.
13: Well, that's right. In a fresh development, what we have got to learn that the CBI is soon going to file a charge sheet against all the 13 accused who were arrested earlier by the CBI. Because initially, what we have been witnessing that if you see those arrests, some initial arrests were made by the state police, and then later on the case was transferred to the central agency, which is the CBI in this case, the nodal agency, which is investigating this very case. And after that, what we have seen that all the middlemen who were part of this entire nexus have been arrested. So there are 13 accused who were arrested by the CBI in connection with the paper leak case, who are still in jail right now. And the information that we are getting right now is that CBI is very soon going to file a charge sheet because the CBI has got some solid evidence against all those individuals, and soon they will be filing a charge sheet.
2: Live there with the latest, we have that news for you that the charge sheet, when it comes to the NEET accused, 13 of them who are in jail currently, that charge sheet is to be filed soon. In related news, according to sources, the NEET paper leak accused will be tried under anti-cheating law. Fast-track courts are to be established in 4 states. According to sources, the central government is going to direct states and respective high courts to establish fast-track courts for cases filed under this act. practice law is the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It came into effect on the 21st of June 2024. It covers recruitment, entrance examinations conducted by the institutions, namely the UPSC and also the SSC, the Railway Recruitment Board, the RRB, the Institute of Banking Personnel Selection, the IBPS, the recruitment examinations conducted by central government ministries, departments, attached offices and subordinate offices. The NTA, the National Testing Agency, as well as any other authority notified by the central government. Since examinations conducted by the NTA fall under this law, cases involving unfair means in these examinations will also fall under its purview. These courts will hear cases every day to ensure speedy trial and speedy delivery of justice. Four cases have been registered under this Act in the current NEET paper leak case. It is proposed to establish fast-track courts on a priority basis under the jurisdiction of the Bombay, Calcutta, Delhi and Madhya Pradesh High Courts. Two of these cases fall under the jurisdiction of the Bombay High Court. Now, violence erupted near Delhi's Jantar Mantar late on the night of the 22nd of July as protests spiraled into clashes with the police. People pelted stones at security personnel, leaving a Delhi ACP with a head injury and another police inspector assaulted during the violence. Police responded with a lathi charge to disperse the crowd. Several vehicles were also vandalized in the chaos. Heavy police deployment remains in place around the protest site to prevent any fresh flare-up, and authorities are monitoring this situation very closely.
14: Kishor ji, jab ye aap par hamla hua, aap kahan se aa rahe the, kya kuch hua?
15: Sir, main Hanuman रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था, जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2,500 की भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ। मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था, मैं वर्दी में था तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा। मैंने उनको मना किया ऐसे मत करो, फिर उसमें से एक दो जो लड़के थे बोले सर ठीक है आप जाइए जाइए। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर उन्होंने मुझे ओवर पार कर लिया। 150-200 लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से मुझे धक्का मुक्की करने लगे और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने कोई चाकू मारने की कोशिश की, और उन्होंने जो हाथ में ब्रेसलेट या कड़ा पहना था उसको उन्होंने पंच बना के उसको मारा मेरे को सर। तो मुझे चोटें आई हैं सर में, साइड में और पूरी बॉडी में ब्रोजेज हैं, इंटरनल इंजरी भी हैं सर काफ़ी सारी। तो उसके बाद फिर मैं आगे, हमारी टीम थी वहाँ, मैं बचा वहाँ जाकर।
16: This evening at around 8:30 p.m., another round of clash has broken out at this very road. This road is known as Tallest Twai Mark. I would like to request my VJ to zoom in and show you the visuals over here. Large number of crowd has swelled up over here, and earlier what we have seen that a Delhi police team have requested these individuals to move back, but they are resisting and they are still over here. And what we have seen that out of this crowd, some individuals have pelted stones, in which what we have seen that one SHO and one ACP rank official has got injured. So right now, if you see, the investigation is currently underway and both the officers have been taken to the RML hospital where their treatment is currently underway. But right now, you can see the situation at ground zero. Towards my left, if you move forward, this is the Cannot Place side, and towards my right, if you see, this is the Parliament Street side. So the entire road has been blocked, the entire road has been choked for the last 5 to 6 hours. But at this stage, things are completely normal, things are okay. This is what we have, the information that we have received from the DCP over here. He is saying that everything is completely under control, but these students have been constantly saying that they are going to continue this protest over here until Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns.
2: Managing Editor Vishnu Som was at Jantar Mantar last night, where he spoke to the members of the CJP.
17: What are your primary demands now? Because they've been changing slightly. I know about Dharmendra Pradhan. But you also want compensation for the families of the students who died by suicide. To resolve this, what are your basic demands?
18: No, I think these two demands have been there since day one, 1 crore compensation and Pradhan's resignation. The only thing that got added was the way the protesters are now being targeted. The peaceful protesters who were mostly peaceful, they didn't resort to any form of violence. What we are understanding is that a lot of them are now being, will be tried under FIR.

0: kind of statements we have been seeing coming in from Union Home Minister Amit Shah as well, Defence Minister Rajnath Singh, and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju as well.
1: Deekshree, thanks for joining me live there. Moving on now, NDTV's Managing Editor Shiv Arora spoke to NEET students on this huge controversy. Listen into this excerpt.
2: Harsh is also a NEET aspirant. Harsh, do you have a different view from Uma, the way you're looking at the protests that are playing out? Because you are also a student. You've also taken the NEET exam. You've also seen paper leaks and suffered because of them. Is your view different from Uma, Harsh?
3: Sir, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि problems क्या है, but problem के solution पे कोई नहीं जा रहा है. ये protest start हुआ था कि 24 बच्चों ने लगभग suicide कर लिया. Suicide बच्चे करते क्यों हैं? इस topic पे किसी ने बात किया क्या? क्या किसी ने बात किया? Suicide कर क्यों रहे बच्चे? और suicide क्यों कैसे ना हो? इस पे किसी ने बात किया क्या? शायद किसी ने बात नहीं की, ना तो protest करने वाले ने, ना news ने, ना ही पक्ष ने, ना ही विपक्ष ने. सुसाइड करते क्यों, इसका रीज़न बताया क्या? रीज़न ये है कि जो भी बच्चा नीट की तैयारी करता है वो लगभग टॉपर बच्चा होता है क्लास का. मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे तैयारी करते हैं, और जब उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो लगभग बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे हैं वो बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं. मैं 4 बार से बाउंड्री पर रह रहा हूँ, बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं. अब बाउंड्री पहुंचने के बाद हम ऑप्शन खगाल रहे हैं. हम 4-5 दिन से सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि हम कोई और एग्जाम दे सकते हैं क्या, और हमें अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिला जिसमें सिलेबस सेम 12th का पूछा जाता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी. कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता हो, सिर्फ और सिर्फ नीट और सीयूटी.
2: हर्ष, ये प्रोटेस्ट तो ये मुद्दे रेज कर रहा है. They are trying to get exam reforms. They are asking for accountability.
3: सिर्फ accountability. Accountability से क्या होगा? अगर अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना resignation दे देते, उससे होगा क्या? क्या अगली अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को सोसाइटी करेंगे? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को उनको सीट मिल जाएंगी क्या? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता और राहुल गांधी को भी नहीं पता प्रॉब्लम क्या है. ये रियल बात है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या आ रही. प्रॉब्लम ये आती है, जो बच्चा नीट की तैयारी करता है वो अपना सब कुछ लगा देता है, अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है, अपना पूरा दम लगा देता है, अपना पूरा काया पलट कर देता है. मेरा चेहरा देख रहे हो, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है, सिर्फ नीट की तैयारी करते हुए ये सब हुआ है. अब जब तैयारी करने के बाद अब हम पेपर देके आते हैं और शायद उस दिन हमारा पेपर बिगड़ जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम किसी और एग्जाम में भी बैठ सकें. कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती हो. क्या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करने चाहिए जिनमें 12th पास क्राइटेरिया हो और वहाँ गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पूछा जाए? वहाँ पूछा क्या जाता है? जनरल साइंस पूछी जाती है, जीएस पूछा जाता है जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है. किसी भी एग्जाम के काबिल नहीं हम आज, सिर्फ हम नीट ही दे सकते हैं अगली साल. अब अगर पेपर से एक दिन पहले हमारा मोमेंटम बिगड़ जाए तो हमारा पेपर खराब हो जाएगा. मेरा खराब हुआ है इसी बार, जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले मेरे यहाँ लाइट कट हुई और मैं रात के 12 बजे पावर हाउस में बैठा हूँ. रजिस्टर्ड है, मैंने कॉल करा है, मैंने बाकायदा पूरा एप्लीकेशन दिया कि लाइट भेजिए, क्योंकि मुझे सुबह पेपर देने जाना और रात के 4 बजे लाइट आई है. 4 बजे लाइट आई है. अगर एक दिन पेपर खराब हो जाता है, क्या पेपर साल में 2 बार नहीं होना चाहिए? अगर पेपर जैसे जेई मेंस में 2 बार होता है, क्या नीट का पेपर 2 बार नहीं हो सकता है क्या? क्या नीट के पेपर को 2 बार नहीं करवाना चाहिए? अगर नीट का पेपर 2 बार हो जाए तो एक बच्चा अगर इस बार नहीं अच्छा कर पाया तो शायद अगली बार अच्छा कर जाएगा. तो प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो पेपर में ऐसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम बनाए जाए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाए और पेपर साल में 2 बार हो. इसके अलावा अभी बात करना सर, एक सेकेंड.
2: आई कम बैक यू हुमा, द बोथ ऑफ यू आर एंग्री एंड अपसेट. ओके, आई हियर द एंगर एंड द एंग्विश इन बोथ योर वॉइसेज, बट बोथ ऑफ यू आर एंग्री फॉर सम सिमिलर रीजंस बट वेरी डिफरेंट रीजंस. व्हाइल यू सपोर्ट द प्रोटेस्ट कंप्लीटली हुमा, एंड यू बिलीव दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रोटेस्ट टेक्स प्लेस, हर्ष सिंह, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा.
3: समाधान होगा, बट अगर नीट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो.
2: ओके,
3: नीट के प्रोटेस्ट,
2: दैट इज व्हाई द बोथ ऑफ यू आर हियर टुनाइट.
3: नीट के प्रोटेस्ट ने सर, नीट के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था लेकिन सुना नहीं गया था.
2: Okay.
3: मैंने खुद प्रोटेस्ट जाकर करा था, मैंने परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन दी गई. और इन आतंकवादियों को परमिशन एक दिन में मिलती है क्यों? इन आतंकवादियों को परमिशन आप रातों रात देते हैं, रात भर बैठ सकते वहां, और हमें 4 बजे लाठी मार के भगाया गया था. मुझे ध्यान है वो दिन 2024 में हम प्रोटेस्ट करने गए थे और मुझे लाठी मार के बाहर निकाल दिया जाता था 4 बजे. जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई, तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है. मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी तो नहीं पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर.
2: Okay,
3: लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर. आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है. मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं. 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता।
2: हर्ष बैठो, ये
3: गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए।
2: सारे जो पॉइंट्स हैं,
3: रिजर्वेशन कहाँ कहाँ होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझ रहे सिर्फ कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वही एमपी का बच्चा 540 पे पाता है, वही छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 पे पाता है। क्यों? मेरे मार्क्स पे हर बार एमपी में सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्तों ने स्टेटर लगाया जनरल कैटेगरी से आके। आप कहां कहां पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है, क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है।
2: तो
3: इस बारे में कौन बात कर रहा है प्रोटेस्ट में? इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे हैं? इस बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है, जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है।
2: आपका कहना बेसिकली है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल जो इश्यूज है
3: वो ही नहीं,
2: डिमांड नहीं हो रहे, वो
3: पता किसको है, वहां प्रोटेस्ट में बैठा कौन है?
2: ठीक है, ओके, सिट डाउन, लेट्स हियर
3: हुमा। अमेरिका से आकर हमारे पास अमेरिका जाने का वीजा बनवाने का पैसा नहीं है।
1: On that note, we're slipping to a short break. I'll be back with more, this time on the big release down south, Janayagan, and the frenzy across the country. Yeah.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: बेस्ट सेहतमंद हर रोज.
1: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
2: Really?
1: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा क्या स्वाद है.
3: अरे मेरे राजा.
5: सबका राजा आर्गन मसाला.
6: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है. पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ.
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों.
8: कुछ तो बात है इस तेल में.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: has also reached out to the opposition parties, but so far there is no understanding between the government and the opposition. That's why this state office came to me.
1: Akhilesh Sharma there reporting on what is really happening inside the parliament. It's day four of the monsoon session. Let's just get some political reactions at this moment.
2: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज़ के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने एक कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया, फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज़ टॉलरेट नहीं करेंगे।
3: सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा

0: डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार है डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
1: दिस आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी? थिंक अबाउट इट। चिल्ड्रन आर प्रोटेस्टिंग, दे आर ऑल यंग। थिंक अबाउट इट। They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is
2: this? युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं। आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? सब तो आपकी वजह से हो रहा है। सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
0: आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें चिंता है, हम फास्ट ट्रैक रूट बनाएंगे, लेकिन डेढ़ महीने से प्रधानमंत्री सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, बच्चों से माफी मांगो और दिल्ली पुलिस के दरिंदों को सजा दो जिन्होंने बच्चों को मारा है।
3: मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पूरे मामले पर, पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही गठन करने की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मूल मांगे हैं छात्रों की उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, माफी की बात हो, क्या आप जवाब दें?
4: छात्र सल्यूशन चाहते हैं और छात्रों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए जो दोषी है उनको दंडित किया जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की मंजूरी दी है, संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ा कदम छात्रों के हित में, छात्रों की मांगों को देखते हुए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया गया, इसके लिए छात्रों को मैं बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। जहां तक विपक्ष की आपने बात कही, आज युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। युवा क्या चाहते हैं? एक क्लीन ट्रांसपेरेंट ये जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उसी के लिए एग्जाम्स निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ये कदम सरकार ने उठाए और नीट का एग्जाम बहुत जल्दी वापस करवाया और सफलता।
5: आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है।
6: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
7: I don't think that you should trivialize the protest of the youth. This is a legitimate protest. They are protesting against the systematic examination paper leaks. The entire integrity of the examination system is called into question. And further, there is no reason to have a centralized admission process for colleges which are administered and staffed by state governments. So there are both legitimate people's issues, and the opposition, the Congress party, is only.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: energy to students and action against those accused of assaulting the demonstrators.
1: Today, PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Now, if this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time and on time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening.
2: किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं. वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है. और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए. तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में. यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो. यानी एजिटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीस को खुल के उन्होंने बोला.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के. उन्होंने जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो. And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students.
4: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हमारे साथ हैं. सर, एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, जितने भी पेपर लीक्स हैं सब फास्ट ट्रैक में जाएंगे और जल्द से जल्द उनको सजा होगी जो इसमें दोषी पाए जाते हैं. लेकिन विपक्ष है कि पहले इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, उसी के बाद कुछ भी, भले ही संसद में चर्चा या फिर आगे की बातचीत. क्या कहेंगे सर, कैसे गतिरोध खत्म होगा?
5: मैं पहले एट द अरे आउटसेट मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर एंड द एंटायर गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट द वट एवर द पेपर लीक इन द कंट्री. इससे पहले भी जो हुआ है, आज भी जो हुआ है, वी आर वेरी मच सेंसिटिव. वी आर वेरी मच, हमने बहुत ही, हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में. तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स, जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून. इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया. उस अमेंडमेंट में 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ फाइन है. इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था. कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन. दिस इज दी कांग्रेस का नीति है.
6: सी, मेयरली अनाउंसिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इज रियली नॉट सॉल्विंग अ सिस्टमिक प्रॉब्लम. There are systemic reasons why these leaks are happening regularly, because the commercial angle of these coaching centers, there is an incentive for them to show inflated results, and so they are willing to indulge in all kinds of unscrupulous practices by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks are happening. This fast track court is only post fact, after an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court.
7: Paper leak ke doshi the jinko pehle giraftar kiya gaya tha, aaj unko dand dene ke liye, is ghor apradh ke liye dand dene ke liye fast track courts ka gathan karne ki nirnay pradhanmantri modi ji ne liya hai. Iska hum swagat bhi karte hain, yuvaon ke hit mein liya hai aur जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है। मेरा केवल विपक्ष इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो, युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको, अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो।
8: ये सरकार समझ ही नहीं रही, सरकार कंप्लीटली कट ऑफ है उन गरीबों से जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा करती है। उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ये कौन सा जादू की छड़ी है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें? UGC NET का एग्जाम लीक हुआ, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, हुआ ही नहीं। ये सब जो है ना आई वॉश है, आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पर आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं।
9: What is this? False claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to be. Because no action from the government. First of all, he has to tell, remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students.
10: Modi ji, Bharati Rajneet gawah hai ki jab kabhi kisi mantri ke विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए।
0: Meanwhile, ruckus over debate on NEET issue continues in the parliament. The opposition created a ruckus in the Lok Sabha earlier today, with several MPs trooping into the well of the house and also raising slogans, disrupting proceedings. As demonstrations intensified, the chair repeatedly appealed to members to maintain decorum and allow the house to function. Union Minister Kiran Rijiju said that opposition is now trying to politicize the students' issue for their own benefit. However, Mallikarjun Kharge announced that there will be no discussion before the Education Minister's resignation. NDA MPs staged a demonstration at Makardwar, accusing the opposition of disrupting parliament. The opposition, however, hit back with a counter-protest inside the parliament complex. Opposition MPs accused the centre of evading accountability on various issues.
1: Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of house, no discussion in the house because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore, they are disrupting. They don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country.
11: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
12: प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में, इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? खुद से पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो।
6: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था। कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं,
13: लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे।
2: सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए हैं, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
14: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांगे वो मांग मानी जाए। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं, कम से कम बातचीत तो करें वो और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है।
3: सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से, सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज।
15: युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं, आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं, सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है, अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप, आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए, आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे, आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
16: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
0: Breaking news coming in. Sources telling us that there has been no middle ground which has emerged for holding the second round of talks between the CJP and the government. Sources say that the CJP is not ready to come to any official residence or office to meet a government representative. Remember earlier, Union Minister JP Nadda had expressed government's willingness to hold talks with the CJP yesterday, and just today as well, Dr. Jitendra Singh also came out and said that four open invitation for talks has been sent to the Kokra Janta Party's representatives. Apart from that, they've also said that we will have talks on all issues at your convenience, but the venue will be perhaps the official residence of JP Nadda or his house. But the CJP and its representatives are adamant that the talks will only happen either at Jantar Mantar or at a neutral venue. Hence, that's a huge roadblock right now, with the CJP rejecting the official meet venue. Despite the government's multiple outreach, the center

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्द्र मसाला।
9: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
10: It's incredible.
9: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
10: Welcome to Left, Right, and Center.
9: Hard facts.
10: War struck country.
9: Hard questions.
10: In the Ukraine.
9: 30 years of trust.
11: In the Kargil area.
10: North Ukraine.
12: In France. In Italy.
10: At Srinagar.
12: Hi,
10: Vishnu Shom for NDTV.
9: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: ऑर्गेनाइजेशन सब काम कर रहा है। सार जिला बुरी तरह प्रभावित है, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, साथ में गोलाघाट।
1: और सर दूसरी बात है कि कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ, कि कुछ इलाकों में जब बाढ़ का पानी घट रहा है, कुछ इलाकों में नए तौर से इनंडेशन हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है प्रशासन की।
0: ये पहाड़ों से क्लाउड बर्स्ट हुए, कभी कभी क्या होता है पत्थरों का बीच में, पहाड़ों का बीच में पानी फंसते रहता है, वहाँ से निकालने का जब भी रास्ता मिलता है पानी तुरंत निकाल के आते हैं। तो इसीलिए पहला वेव का जो पानी है वो ही अंतिम नहीं है और आते रहता है, और ख़ास करके पहले तो ऊपर का इलाका में पानी रिसीड होगा, फिर वही पानी नीचे का इलाका में जाएगा, और ब्रह्मपुत्र भी ऊपर में बह रहा है, तो इसीलिए पानी ब्रह्मपुत्र भी नहीं जा रहा है, तो नया नया एरिया पानी घुसते जा रहा है। तो जब तक ब्रह्मपुत्र का लेवल डाउन नहीं होगा पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा। और कल यहाँ में एक ब्रिज भी हुआ है, एक कलवर्ट है बीच रोड और एम्ब्रेकमेंट का बीच, वो भी टूट गया है, तो उसका कारण भी दिसांग में जो घटना हुए कल उसका कारण भी कोई सारे गांव में पानी घुसा है।
1: और एक मुद्दा है कि आपके जो एमएलए हैं वो लोग भी ग्राउंड जीरो में जा रहे हैं, कुछ बातें ऐसे निकल के आई हैं कि नाजीरा या फिर दूसरे इलाके में बहुत लोग मिसिंग हैं, उसकी
0: पुष्टि? मैं वही बोल रहा हूँ, कल भी हमें डेड बॉडी मिला हूँ, और यहाँ में मिसिंग का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए इस बार कैजुअलिटी डेथ टोल काफ़ी बड़ा नंबर होगा।

0: बारे में उठा रहे।
1: जो ऑफिशियल है सर वहां पर आने के ना। जी
2: सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी, और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज।
3: Well, while we've seen multiple outreach by the government towards the CGP representatives, let's now tell you what is happening inside the parliament. Ruckus over debate on NEET issue continues in the parliament. The opposition created a ruckus in the Lok Sabha yet again, with several MPs trooping into the well of the house and also raising slogans, disrupting proceedings. As demonstrations intensified, the chair repeatedly appealed to members to maintain decorum and allow the house to function. Union Minister Kiran Rijiju said that the opposition is now trying to politicize the students' issue for their own benefit. However, Mallikarjun Kharge announced that there will be no discussion before Education Minister's resignation. NDMP staged a demonstration at Makar Dwar, accusing the opposition of disrupting parliament. The opposition, however, hit back with a counter-protest inside the parliament complex. Opposition MPs accused the centre of evading accountability on various issues.
4: The Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of house, no discussion in the house because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore, they are disrupting. They don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country.
5: Sarkar aage aaye, statement diye ki jo istifa hum pooch rahe hain, aur education minister istifa dena chahiye. विनती करता हूं उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
6: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
7: प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में, इतनी इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन के लिए चल रहे हैं? खुद से पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो।
2: सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी, और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन

0: प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज।
1: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं, कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है।
2: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था। कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं, और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे।
3: युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं। आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है, अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए, आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे, आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
4: John Brittas is with us. Sir, the sources in the government is now stating to us that government has made it very clear that they will not go to Jantar Mantar. Either the CJP should come to the Mantralay or at the residence of JP Nadda.
5: See, the government is all powerful. Let them shift the Jantar Mantar to PM House then. What nonsense they are speaking. Are we living in a democracy? Masoom Bachcha Log, their own protest there, agitation there. Can't a responsible person go to them? They have been thrashed, beaten. Their skull has been broken. Let them see what is the plight of our students, our children.
6: All right, my colleague Himanshu Shekhar is now joining me live from outside the parliament. Himanshu, two things. First up, the government has sent multiple outreach to the CJP. CJP has rejected. There's been no middle ground. CJP is extremely adamant, now says that we will have countrywide protests tomorrow. Why are they doing that? And second, I also want to ask you about the politics speaking up with that meet at Rahul Gandhi's residence at 6 p.m.
7: Well, I think the challenge seems to be growing on both the fronts for the government. On the one side, the effort to engage CJP for the second round of talks has not fructified so far. And there are differences about just the location as to where the talks should be held. And we did hear the CJP spokesperson say yesterday that if the government wants to talk to us, we will not go to them now. They will have to come to Jantar Bantar or to a neutral position, at a neutral location. Now, the government is saying that talks can be held at JP Nadda's residence or in his office, and the government is not ready to accept the demand for talks at a neutral location. So as far as the CJP government talks are concerned, there is of course a logjam, in the sense that we do know a memorandum was submitted by CJP before the government. Now government wants to respond, but the differences about how the modalities of talk should move forward seems to have stalled the talks for the moment. Now on this other side in the government now, there are differences between the government and the opposition. And Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Supriya Sule and other leaders, they met Lok Sabha Speaker today and made it very clear that they want first the education minister to resign before the talks can begin. And remember, there are also differences in both Lok Sabha and Raj Sabha about the modalities of the discussion. Now, opposition MPs are insisting that government should agree for a debate under an adjournment motion in Lok Sabha and under Rule 267 in Raj Sabha, but government is not ready to accept the opposition demand. So we do see challenge growing before the government on both the fronts. We'll have to wait and see how government will strategize its next move. But for the moment, government is giving priority to engage the protesting students.
6: Yes.
7: Talks. So I think there is an outreach today. we should wait for more response from the government on this issue.
6: Right, Himanshu. And the government clearly saying that we are with the students. We want to bring out a solution. Thanks, Himanshu, for getting those insights here with us. Let's now tell you more about how the political battle over paper leaks is only escalating. Prime Minister Modi has now announced a major crackdown, promising fast-track courts and stringent punishment for those behind exam paper leaks, calling the future of students the government's top priority. Prime Minister Modi also said that those trying to destroy the aspirations of India's youth will not be spared, and directed authorities to take all required steps to protect students' interests. The announcement has now triggered a sharp political face-off, with Rahul Gandhi accusing Prime Minister Modi of harming the future of India's youth, despite Prime Minister Modi's multiple assurances. Now, they are demanding the sacking of the Education Minister Dharmendra Pradhan, and also an apology by the Prime Minister and action against those accused of assaulting the protesters. Take a listen to all the reactions coming in on this.
8: Today, PM has announced that fast-track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Now, if this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time, and on time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening.
0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के. उन्होंने जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स.
9: हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में. तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स, जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून. कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन. दिस इज दी कांग्रेस का नीति है.
10: पेपर लीक के दोषी थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था, आज उनको दंड देने के लिए, इस घोर अपराध के लिए दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने की निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है. इसका हम स्वागत भी करते हैं, युवाओं के हित में लिया है, और जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है. मेरा केवल विपक्ष इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो, युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको, अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो.
11: किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं. वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है, और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वो ही देना चाहिए. तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप, उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में. यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो, यानी एजिटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीस को खुल के उन्होंने बोला.
12: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स. नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स नाउडेज, नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स. दिस क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिसअपीयर्ड. Nobody is going to be. Good, no action from the government. First of all, he has to tell, remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students.
13: Modi ji, Bharat ki rajneet, गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए।
7: See, merely announcing fast track courts is really not solving a systemic problem. There are systemic reasons why these leaks are happening regularly, because the commercial angle of these coaching centers, there is an incentive for them to show inflated results, and so they are willing to indulge in all kinds of unscrupulous practices by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks happening. This fast track court is only post fact, after an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court.
14: ये सरकार समझ ही नहीं रही, सरकार completely cut off है उन गरीबों से जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा करती है। उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ये कौन सा जादू की छड़ी है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें? यूजीसी एनईटी का एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, हुआ ही नहीं। ये सब जो है ना आई वॉश है, आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पर आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं।
15: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है, इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार।
16: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
17: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए।
6: Well, we're getting you some breaking news right now. The Delhi police has given out a statement, sources telling us that anyone found involved in rioting will now face legal action. In addition, steps will be taken to cancel their passport. This is a warning of the Delhi police to all the miscreants as well. While they're student protesters at Jantar Mantar, there are also various miscreants, unknown people who are turning the protest violent, because we've also seen stone pelting, barricades being broken by various miscreants, various unknown people at Jantar Mantar, and there are also videos of them attacking the police. This at a time when various students have also been injured at Jantar Mantar, and the march, the Sansad Chalo march on Monday, perhaps turned violent because of the clashes between the protesters and the police personnel. But right now, a clear warning by the Delhi police that the passports of rioters will be cancelled. Those who are trying to turn the protest violent and are taking law and order in their own hands. I will go across Anushka, who's been tracking this story very closely. Anushka, we did see how the protest turned violent on Monday, but now that clear warning by the Delhi police that the passports of the rioters will be cancelled.
18: Well, that's right, Rahisha, and a significant development. What we are getting to know from our sources is that the Delhi police has banned cancel the passport of the students or the protesters who will be found, writing there at the very heart of the central Delhi. We have seen the protest, how it has been evolving also. We saw yesterday how a violent clash had broken out between the protesters and the police personnel who were deployed at the very place where several of the police personnel had in fact gone on to say that a clash broke out when the police were stopping for the students to, break the barricade that has been put in Jantar Mantar and marched towards the Parliament Street police station, after which a riot broke out. Many police officials were also injured in the process, while several protesters who were present there were also involved in this kind of incident. We have seen several protesters who have come out to say that they were a victim of the, of police officials also. And now we are seeing this significant development coming in, where the Delhi police have gone on to say that they will be cancelling the passport of all the rioters who will be found, involved in these kind of incidents.
6: Okay. Right, Anushka, thanks for sharing those insights here with us. All right, staying on with this story now, violence erupted near Delhi's Jantar Mantar. This, of course, the Delhi police has given out that warning that the rioters' passport will be cancelled. Let's now tell you what all has been happening. Violence also erupted near Delhi's Jantar Mantar late on the night of July 22nd as demonstrations spiraled into clashes with the police personnel. Protesters pelted stones at the security personnel, leaving a Delhi ACP with a head injury and another police inspector assaulted during the violence. Police responded with a lathi charge to disperse the crowd. Several vehicles were also vandalized in the chaos. Heavy police deployment remains in place around the protest site to prevent any fresh flare-up, and authorities are also monitoring the situation very closely. Meanwhile, Sandeep Lamba, who's a senior Delhi police officer who has come under fire after slapping a woman protester during July 20th Sansad Chalo March, has now been removed from all security-related duties from Jantar Mantar.
19: तो मुझे लगा ठीक है ये स्टूडेंट्स होंगे यहां से निकल जाऊंगा लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं थे तो बाद में मैंने देखा सबने मास्क लगाया हुआ है मुंह पे कपड़े बांधे हुए हैं काला कपड़ा बांधा हुआ है इस तरह से पूरा बांध के और हाथों में लाठी डंडे वगैरह थे तो दे वर वेल प्रिपेयर्ड थे वो पहले से कुछ करना है कोई ना कोई मिले जो उसको मार लगाना है छीना झपटी करनी है तो उन्होंने वो किया मेरे साथ ना 150 से 200 लोग थे आप उसमें वीडियो में देखोगे 150 से 200 लोग जो कुछ लोग तो नहीं होते और वो सब एक ही प्लानिंग से आए हैं तो इसका मतलब वो जान से मारने के लिए ही सोच के आए थे कि मारना है आज
20: हमारा स्टाफ था उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया तो उसमें से 3-4 लोग भाग गए थे बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भाग पाए पर हमें वापस से पकड़ लिया
6: 25 days into his hunger strike, Sonam Wangchuk has released his first video message since being hospitalized. Speaking from Gurugram's Medanta Hospital, Wangchuk said that he was willing to end his fast if the government gave two assurances. Number one, that force against protesters would stop and that no punitive action would be taken against the student protesters. Wangchuk, however, made no mention of the Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation in his video. In his earlier letter to J.P. Nadda, he said that the government had assured him that the demand for Pradhan's resignation would be considered. This is perhaps a softer stance than an outright insistence on the minister stepping down. Meanwhile, J.P. Nadda says that the government is open to discussion on all issues at any time at the convenience of the Kokra Janta Party's representatives, further raising hopes of a possible breakthrough. But that has now been shut because there's been no middle ground on round two of talks because the CJP representatives do not want to hold the talks at Nadda's residence and they are insistent that the talks should only happen at Jantar Mantar or a neutral venue.
21: Mein सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं, हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे।
6: Dhirmendra Pradhan was once a student leader protesting on the streets of Bhubaneswar over an alleged question paper leak. Today, as the Union Education Minister, he faces students on the streets protesting allegations of another paper leak. From protester to the man at the center of the storm, this is the irony at the heart of Dharmendra Pradhan's political journey.
2: Nearly three decades ago, Dharmendra Pradhan was a student leader on the streets of Bhubaneswar, protesting an alleged question paper leak and demanding answers from the government of the day. Pradhan's political journey began on the streets of Bhubaneswar. In 1997, when Odisha was ruled by a Congress government led by then Chief Minister Janki Balla Patnaik, around 1,500 students gathered outside the state secretariat to protest an alleged examination paper leak. Among them was a young Pradhan. At the time, he was an ABVP leader and was already emerging as a prominent figure in student politics. By 1997, he was on the verge of formally joining the BJP. Prashant Raut was a junior of Dharmendra Pradhan at Utkal University.
22: I was junior to him, 3 years junior to him. I was in that particular agitation. And Dharmendra Pradhan ji led the agitation from front, and he led the agitation fairly nearly for a day, and that time police was very brutal, and for first time Odisha saw the rapid action force.
2: But student politics in Odisha in the 1990s was often anything but peaceful. Campus elections were marked by intense political rivalries, and according to Raut, Pradhan himself was once attacked during a campus election after it became apparent that he was likely to win.
22: He was in front and he was beaten, he was mercilessly beaten, and he was injured grievously. He was admitted in the hospital, he was being taken into the custody by the police, and he was at that time a hero at the Odisha student politics.
2: Those years in student politics laid the foundation for Dharmendra Pradhan's political career. From the ABVP to the BJP and eventually the Union Cabinet. The student leader is now the Union Education Minister. And this time, it is students on the streets protesting against his government over allegations of paper leak. Bureau Report, NDTV.
6: All right, let's now tell you what else is happening at this point of time. We'll take you through how the Bollywood stars are now supporting the student-led movement right now. Take a look.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
7: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
8: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
9: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
10: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now.

0: रिटेन कर सकता है, उस पर कहीं ना कहीं बात आ सकती है। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार जो स्टूडेंट का मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ है जो पेपर लीक के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं। सर लगातार आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या
1: आने के बाद बात करेंगे,
0: क्या प्रदर्शन करने की कोई तैयारी है सर?
1: देखिए यहाँ एक बैठक है, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं।
0: ठीक है, देखिए मुकुल वासनिक थे, वो कह रहे हैं कि बैठक है इसलिए उनको यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन बिल्कुल अंकित, सीजीपी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हो रही, राहुल गांधी शामिल नहीं हो रहे। लेकिन जिस तरह से सीजीपी का 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद तमाम जो तस्वीरें निकल के आई उसको लेकर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी कर रही है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जस्ट उसके नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो है प्रदर्शन किया था, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं सीजीपी से कांग्रेस ने अपनी दूरी को बनाए रखा है। लेकिन जो पेपर लीक का मुद्दा है और खास तौर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन की बात है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो कलेक्टिवली आगे आकर लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन इस बात पे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार क्यों नहीं सीजीपी के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण ये है कि
2: कांग्रेस with me just hold on for a second. Let's also get Jainendra, our colleague who covers the Congress party very closely. Jainendra, is there a surprise protest that Rahul Gandhi is planning once again with all the India Alliance members reaching his residence? What's on the menu, what's on the agenda? Kyunki jo humne pehle dekha tha Jainendra, do din pehle सबको बिल्कुल चकित कर दिया था राहुल गांधी ने उस प्रोटेस्ट पे जो प्रधानमंत्री के घर के सामने हुआ था। तो आज क्या प्लानिंग है?
3: देखिए ऑफिशियली तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष आए, हम सबने उनसे पूछा कि क्या कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हम चाय पीने आए हैं और यहाँ पर हाई टी का बंदोबस्त भी है, जिस तरीके के इंतजाम है। तकरीबन 150 से 200 इंडिया गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, उन सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम है। लेकिन असली मकसद जो है वो चाय नाश्ता नहीं है, एक फॉर्मल मीटिंग होगी और इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि ये सब लोग यहाँ से मूव करेंगे बसों में राजघाट के लिए और वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा सकता है। हमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से सोमवार को जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, बल प्रयोग हुआ, उसके खिलाफ राहुल गांधी तमाम इंडिया अलायंस के सांसदों के साथ राजघाट पर एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट वहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं। और इसी को लेकर के ये सब लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और एक एक करके सभी पार्टियों के सांसद जो है वो पहुँच रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रोग्राम है, व्हाट इज द प्रोग्राम?
4: आई डोंट नो
3: व्हाट इज मैसेज,
4: वी डोंट नो, ओनली मीटिंग मैसेज।
3: तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो सांसद आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन क्या कार्यक्रम है उसके बारे में नहीं। अनिल यादव सांसद है राज्यसभा के, अनिल भाई क्या प्रोग्राम है?
5: अभी अंदर हम चाय पे मिलने आए, साहब से आदेश है कि चाय पे आने के लिए सब लोग चाय पे आए।
3: तारिक अनवर जी पहुंचे हैं। तारिक सर आप लाइव हैं, जरा आप बताएंगे क्या है कार्यक्रम,
6: क्या पूछा है सर?
7: कोई कार्यक्रम अभी जानकारी नहीं है, अंदर जाने के अभी अंदर जा रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सब सांसदों को बुलाया है,
3: अब क्या आप ही बताइए। चाय नाश्ता आप सुन सकते हैं कि सांसद लोग बता रहे हैं कि चाय नाश्ते पर राहुल गांधी ने बुलाया, लेकिन हमें जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कि 3 बसों का इंतजाम किया गया है और इन बसों में लगभग 100 से ज़्यादा इंडिया अलायंस के सांसद जो हैं वो मार्च करेंगे। 2 वेन्यू जो है वो माना जा रहा है कि जा सकते हैं, एक राजघाट और दूसरा जंतर मंतर भी जा सकते हैं, हालांकि ज़्यादा संभावना जो है वो राजघाट की है। लेकिन क्या पुलिस इजाज़त देगी इन सबको मूव करने की, इसकी संभावना कम लग रही है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के MP, सुमन जी कहाँ, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे अंदर?
8: क्या होना है वो तो अंदर जाके पता चलेगा, वहाँ से आने के बाद बताएंगे।
3: आप लोगों को संदेश क्या है, मैसेज क्या है?
8: कुल मिलाकर सिर्फ ये है कि यहाँ बैठक बुलाई है, लोगों को बुलाया है। कोई गोपनीयता नहीं है, आपके सामने हो रहा है सर।
3: अचानक आप लोग पीएम आवास एक दिन पहुंच गए, इसीलिए तो दिलचस्पी है कि आज कहाँ जाने वाले हैं?
8: नहीं, अंदर जाकर के क्या बात होनी है हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, बाद में।
3: तो रामजी लाल सुमन है आगरा से, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सारे जो सांसद हैं वो एक किस्म से सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है मिसलीड कर रहे हैं, इन्हें सच में इन लोगों को भी अभी तक कन्वे नहीं किया गया है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन हमें सोर्सेस ये पता चला है कि सभी सांसदों को मीटिंग के बाद बस में बिठाया जाएगा
2: और बस होता है राजघाट। ऐसा बहुत कम होता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ प्लानिंग करे और वो लोगों को पता ना चले। ये पिछली बार हमने देखा 2 दिन पहले जो हुआ, ना तो कांग्रेस के रिपोर्टर्स को जानकारी मिली उस समय और ना ही बहुत सारे जो

0: एमपीज आए थे उन्हें पता चला। तो कुछ कांग्रेस में एक नए तरीके से इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी बदलाव हुआ है। मतलब बिल्कुल भौचक्का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को, सरकार को, अपने रिपोर्टर्स को भी जो पार्टी को कवर करते हैं उनको भी अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रही है।
1: देखिए, मुझे लगता है 12 साल विपक्ष में बैठकर कांग्रेस ने जो कुछ नई बातें सीखी है उसमें एक ये भी है कि कैसे अपने प्लान को आखिरी तक नहीं जाहिर होने देना है। देखिए, सांसद हमारे तनुष पुनिया कांग्रेस के यहाँ पर इलाहाबाद से आए। तनुष भाई, क्या प्रोग्राम है?
2: पता नहीं अभी, मिलने के लिए बुलाया बस।
1: क्या मार्च निकालेंगे राजघाट
2: तक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
1: देखिए, तो हम पूछ जरूर रहे हैं दर्शकों को के लिए, लेकिन जवाब जो है वो सबका एक ही है। बाराबंकी से ये सांसद हैं तनुज पुनिया, और इनका भी यही जवाब है। तो तकरीबन देखिए, मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो सड़क है यहाँ दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और कर रहे हैं। क्या यहाँ से कांग्रेस के सांसदों को निकलने देंगे बस में बैठ कर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से इस मुद्दे पर प्रदर्शन करे। करमवीर बौद्ध, नए राज्यसभा सांसद, करमवीर जी लाइव हैं आप NDTV पर, क्या प्रोग्राम है आज का?
3: नहीं, मीटिंग है पार्टी की, और जो भी मीटिंग होगा बाहर आके बताएंगे आप लोगों को।
1: कैंडल मार्च वगैरह निकालेंगे?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, मीटिंग है।
1: ठीक है, तो पार्टी की मीटिंग में सब लोग आ गए, लगभग मैक्सिमम लोग आ गए हैं, और अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कहाँ मूव करने वाले हैं। मूव करेंगे, उसके लिए बसों का इंतजाम हो गया है, और देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस अलाउ करती है। जी,
0: अब वो बिल्कुल मूव करने देंगे या नहीं करने देंगे, पिछली बार जो पुलिस को एम्बैरेसमेंट हुआ है उसको देखते हुए वो एक बार देखना पड़ेगा वेदर द पुलिस विल अलाउ द कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस लीडर्स टू इनफैक्ट मूव फ्रॉम देयर। जनेंद्र, स्टे ऑन विद मी। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ न्यू दिस द ऑपोजिशन फील्स दैट द गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट इज पुश्ड ऑन द मैट, एंड ट्रस्ट मी यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट द इंटायर मूवमेंट, द वॉइसिस ऑफ द इन व्हाटएवर वे any organization can, political organizations, students, everybody is now in fact standing behind as far as this youth movement is concerned. Today inside the parliament also, the opposition in fact took on the government, and surprisingly what Rahul Gandhi and the Congress party did day before, they were also able to, you know, in a way, they were also able to, the opposition, the BJP also tried to counter that protest. It was a sight of protest versus protest, not inside the parliament, not in the Lok Sabha, but outside. Both the MPs, the ruling benches, the treasury benches and the opposition almost came face to face. They had to be separated when this protest happened. The BJP and the treasury bench brought protest against the opposition, saying that they put the prime minister's security in jeopardy. And on the other hand, the opposition pushing back, saying that the important issue, the dialogue starts with the resignation of education minister Dharmendra Pradhan. Take a look at what happened inside the parliament today.
4: The Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of house, no discussion in the house because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore they are disrupting, they don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country.
5: Sarkar aage aaye, statement diye ki jo istifa hum pooch rahe hain, aur education minister istifa dena chahiye, aur lakho hazaro log aaj raste pe gire hue, lathi charge ho gayi hai, aur bahut se hospitals mein hain, aur unke maa baap pareshan hain, isliye मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार है डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
6: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
7: प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में, इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन के लिए चल रहे हैं? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो।
8: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांगे वो मांग मानी जाए। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं, कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है।
9: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था। कल ओपोजिशन पार्टीज़ के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज़ टॉलरेट नहीं करेंगे।
10: युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं, आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है, अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए, आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे, आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
11: John Brittas is with us. Sir, the sources in the government is now stating to us that government has made it very clear that they will not go to Jantar Mantar. Either the CJP should come to the Mantralay or at the residence of JP Nadda.
12: See, the government is all powerful. Let them shift the Jantar Mantar to PM house then. What nonsense they are speaking. Are we living in a democracy? Masoom Bechalog, they are on protest there, agitation there. Can't a responsible person go to them? They have been thrashed, beaten. Their skull has been broken. Let them see what is the plight of our students, our children.
0: All right. So after more than 30 days, the Prime Minister has spoken. He's tried to reach out to the young people, though not directly speaking about the protest which is going on. The Prime Minister today put out on X, nothing is more important than the welfare and the future of our youth. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. He have directed the concerned authorities and officials to take necessary steps in this regard. This continues as our series of efforts that we are doing to, in fact, ensure safeguarding the interests of the youth. Well, ladies and gentlemen, this is the Prime Minister reaching out, trying to reach out to the students when there is an absolute boil as far as the anger is concerned among the youth against the government. But the question is, should there have been a more direct approach? Should there have been, in fact, some way directly addressing the students, those who are sitting on protest? Because a lot of people are saying that this is just a band-aid. Does this carry any sort of balm or any sort of, does it dissipate, bring down the tempers? We are yet to see that. But at this moment, this is the, for the BJP, for the government, this is the, as per them, the biggest outreach that has taken place as far as the Prime Minister is concerned. Let's listen in.
4: Today, PM has announced that fast-track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Now, if this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time, and on time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening.
5: किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं. सर, वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है. और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए. तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में. यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो. यानी एजुटेशन को काउंटर करने के लिए उनके MPs को खुल के उन्होंने बोला.
13: हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में. तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स, जो भी संबंधित लोग, ऑल दी 14 हैव बीन अरेस्टेड. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून. कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन. दिस इज दी कांग्रेस का नीति है.
14: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स. नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स नाउडेज. नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड. दिस क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिसअपीयर्ड. नोबडी इज वर्ल्ड बिकॉज़ नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल he has to tell remove the Dharmendra Pradhan from education ministry, then he has to talk to the students.
15: paper leak ke doshi the jinko pehle giraftar kiya gaya tha, aaj unko dand dene ke liye, is ghor apradh ke liye dand dene ke liye fast track courts ka gathan karne ki nirnay pradhanmantri modi ji ne liya hai. iska hum swagat bhi karte hain. yuvaon ke hit mein liya hai aur जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है. मेरा केवल विपक्ष इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो. युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको. अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो.
16: मोदी जी, भारतीय राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन. तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है. फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए.
17: यू सी, मेयरली अनाउंसिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इज रियली नॉट सॉल्विंग अ सिस्टमिक प्रॉब्लम. देर आर सिस्टमिक रीजंस व्हाई दीज लीक्स आर हैपनिंग रेगुलरली, बिकॉज द कमर्शियल एंगल ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स, देर इज एन इंसेंटिव फॉर देम टू शो इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स, एंड सो दे आर विलिंग टू इंडल्ज इन ऑल काइंड्स ऑफ अनस्क्रूपुलस प्रैक्टिसेस by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks happening. This fast track court is only post fact, after an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court.
18: ye sarkar samajh hi nahi rahi, sarkar completely cut off hai un garibon se जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा करती है. उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं. स्पेशल कोर्ट क्या होता है? ये कौन सा जादू की छड़ी है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें?
19: यूजीसी एनईटी का एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट

0: डाल दी, हुआ ही नहीं।
1: ये सब जो है ना आई वॉश है,
0: आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पे आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं।
2: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
3: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्ति को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए।
4: All right, we'll slip into a very quick break at this moment. We are getting you all the latest developments of what is happening on the streets of the national capital as far as this protest of the young students is concerned. Stay tuned.
5: Only two words matter right now: youth and Sansad. Youth want answers, Sansad needs to give those answers. When the entire protest at Jantar Mantar started, is there something that was lacking? Were the hopes dashed from a movement that saw genuine groundswell of support? That's the dialogue that we are having right here on NDTV, because remember, when it's youth, when it's students, the buck stops here.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आर्थर मसाला।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
14: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
15: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
16: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
17: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
18: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: उतना हम देने को भी तैयार हैं. वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज.
1: अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं.
2: सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे?
1: हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मुख्यालय.
3: सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने के ना. जी.
4: All right, slipping into a very short break at this moment. Coming back with much more on the other side. Stay tuned.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
6: वाह मामा, क्या स्वाद है.
5: अरे मेरे राजा.
7: सबका राजा आकर मसाला.
8: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है. पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ.
9: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों.
10: कुछ तो बात है इस तेल में. जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ. 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
11: We are over, Jimmy.
12: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
13: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
14: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
15: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
16: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
17: It's also important that how they are reshaping the industries.
18: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
13: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
19: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे.
13: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन.
3: नाउ वाचिंग एनडीटीवी 24/7. द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज. विद मल्टीपल चैलेंजर्स इन द फ्रे, द टीएमसी आल्सो हैज डन अ बिट ऑफ बीजिंग. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
13: When stories have impact.
20: Padmatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
13: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
3: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
19: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
21: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी.
10: कुछ तो बात है इस दिल में.
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933.
7: बरसों से सरसों.
22: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा. तुम ही हो भारत का स्वाभिमान.
23: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई. आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें. vandebharatam.org पर रजिस्टर करें.
24: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
25: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
24: The show that sets

0: All right, some breaking news coming in at this moment. Massive security development here at Jantar Mantar. A huge police deployment is taking place, as you can see in these visuals. The visuals are coming in from Central Delhi. This is, remember, has been the epicenter, the heart, as far as this entire protest is concerned. Thousands of students have gathered there. Security has also been beefed up outside Rahul Gandhi's residence, the Five Suneri Bagh area, where Rahul Gandhi resides. And of course, the meeting of the India Alliance members is taking place. And you have to see both of these in context. The context is that, like what happened day before, when the Congress suddenly decided that they want to stand in front of the Prime Minister's residence for the protest, today the police is taking no chances. So massive security development bandobast that is taking place at this moment, both outside Jantar Mantar and outside the residence of Congress leader of opposition Rahul Gandhi, where the India Alliance MPs are meeting at this moment. This is the latest coming in, and as I'm speaking, it started to, in fact, come down rain as well. And today in the evening, you can expect a lot of political development. Ritik, just let us move a little bit. You can expect a lot of fast-paced developments. Let me go across at this moment to my colleague, Jainendra, who is joining us from outside the residence of the leader of opposition, Rahul Gandhi. Jainendra, Suraksha ke kade intizam bada diye gaye hain. Delhi police bhi jo pichle kuch dinon mein hua tha, usko dekhte hue koi chance nahi lena chahti hai.
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अंकित. चप्पे चप्पे पर पुलिस है फिलहाल नई दिल्ली इलाके में, तो आसपास के सारे 12 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. और मेरे साथ मनोरंजन भारती जी हैं. बाबा लगभग 2 किलोमीटर से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं है. पुलिस ने वैसे ही इस रोड को सील किया हुआ है, और वैसे भी अगर सील ना भी करे पुलिस तो भी यहाँ से कोई गाड़ी बढ़ नहीं पाएगी. बाबा क्या हाल है बाहर का, आप 2 किलोमीटर से पैदल चलते?
2: जी हाँ, मैं NMC से पैदल चल के आया हूँ. मुझे लगा कि जब NMC से बाहर निकला तो बहुत गाड़ियों का रेला है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर रही है. जब मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के आसपास पहुंचा हूं, प्रेस क्लब के आसपास, वहां पर केवल आदमियों की भीड़ ही दिख रही है, क्योंकि सारे ऑफिस के टाइम खत्म हुए हैं और मेट्रो के सारे गेट बंद हैं. तो हर जगह रोड पे केवल ही केवल लोग हैं, और लोग पैदल चल रहे हैं, लोग गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, लोग बसेज ढूंढ रहे हैं, और उसके वजह से ट्रैफिक जो है मूव नहीं कर रहा है. तो मुझे लगा मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, तो मैं NMC से पैदल चलते चलते यहाँ तक आया.
1: बहुत बुरा हाल हो रहा है अंकित. देखिए, प्रदर्शन की वजह से पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर ट्रैफिक चरमराई हुई है, सड़क पर जाम लगा हुआ है, मेट्रो जो है उसके सारे दरवाजे बंद है, और ऊपर से बारिश हो रही है, तो ऑफिस का खत्म होने का वक्त हुआ है. आम लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई होगी. और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बसें जो हैं वो लगी हुई है. ये सुनहरी बाग रोड है, जिसमें कि 5 नंबर बंगला राहुल गांधी का घर है. घर के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम MPs मौजूद हैं. अंदर स्ट्रेटजी बन रही है. 2 लोकेशन हमें पता चले हैं. पहले राजघाट की जानकारी आई थी, अब पता चल रहा है कि इंडिया गेट जाना चाहते हैं. लेकिन क्या जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है. इंतजार किया जा रहा है मीटिंग के खत्म होने का. औपचारिक तौर पर ये सब सांसद लोग बाहर आए. कैंडल मार्च निकाला जा सकता है, लेकिन पहली बात तो पुलिस जो है मार्च की इजाजत देगी नहीं.
0: और अगर एक मिनट जरा रुकिए, जाइएगा मत. I'm just going to come back to you. What we will do, I want to also show you, ladies and gentlemen, one, of course, what you saw there where Jainendra is, that's Rahul Gandhi's residence. The other one is this human chain being formed between the police and the protesters at Jantar Mantar. Now, this is where the protests have happened. Some clashes have also happened between the protesters and the police. It happened last night as well. At this moment, there are protesters, those who are forming a human chain between the police and the protesters, so that there is no clash. Nobody beats up each other. And then they're trying to ensure that there is some sort of peace that can, you know, despite the deployment, heavy deployment of the police, that can be in fact ensured. So the protesters are standing, there are these volunteers, those who are standing holding their each other's hand, so that the tempers can be calm. Now, for a moment, ladies and gentlemen, just understand, there are these young people between the age of 17, 18, 21, 22, those who are standing there. At this moment, these visuals that you will be seeing cannot be live, because there is no internet there. I mean, I would want to stand there and do this bulletin, but you can't do that for various reasons. There is no internet there. You are seeing these visuals coming in from Jantar Mantar, where there is an attempt once again to ensure that the situation doesn't go out of hands. These visuals that we are putting out on your screens at this moment. लेट मी ऑल्सो वेरी क्विकली ब्रिंग बैक जैनेन्द्र. जैनेन्द्र, दो जगह के विजुअल इस समय दिखाई पड़ रहे हैं. एक जंतर मंतर जहां पर जो बच्चे हैं वो ह्यूमन चेन बना के खड़े हुए हैं. वो नहीं चाहते कि पुलिस और उनके बीच में झगड़ा हो, कोई मारपीट हो, लाठीचार्ज हो, उसका कोई रिएक्शन हो. और दूसरी तरफ राहुल गांधी का घर है, यहां पर सारे नेता इकट्ठे हुए हैं, उनको रोकने के लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है.
1: बिल्कुल बंदोबस्त है और पुलिस जो है वो एहतियात बरत रही है, क्योंकि दो दिन पहले मंगलवार को जो है वो अचानक से राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेस के सांसद और बाद में इंडिया गठबंधन के दूसरे सांसद भी पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास के गेट पर, और वहां पर 3 घंटे तक धरना चला था. पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे और फिर जैसे तैसे कार्रवाई की गई, बल प्रयोग किया गया, सभी सांसदों को वहां से हटाया गया और हिरासत में राहुल गांधी 2 घंटे रहे, बस में घूमते रहे और फिर जाकर देर रात उन्हें छोड़ा गया. प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई. तो अब जबकि पहले से इस बैठक की सूचना मिल गई थी मीडिया के जरिए, कहीं ना कहीं पुलिस को, सुरक्षा बलों को, तो बैठक जबकि अभी शुरू नहीं हुई थी तभी से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंच चुकी थी. और जो सुनहरी बाग रोड है दोनों तरफ से उसमें बैरिकेड लगाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बसों को जो है वो सड़क के दोनों तरफ लगा दिया गया है. आप देख सकते हैं अंकित, हम जब से हम और आप बात कर रहे हैं बसें जो हैं वो लगी हुई हैं, उसमें कुछ पैसेंजर मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन ये बस 1 इंच नहीं हिल पाई है. तो ये स्थिति है इस सड़क की बिल्कुल यहाँ पर.
0: ओके,
1: प्रशासन के द्वारा
0: उसके कारण बिल्कुल आप वहां पर नजर बना के रखिए. जैसे ही कुछ होता है तो यू नो कम बैक एंड वील गेट द लेटेस्ट टू आर व्यूअर्स. सो 2 इंपॉर्टेंट एपिसेंटर्स एट दिस मोमेंट इन द नेशनल कैपिटल, जंतर मंतर वेयर देयर इज मैसिव डेवलपमेंट ऑफ द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स आर फॉर्मिंग अ ह्यूमन चेन सो दैट नथिंग अनटूवर्ड हैपेंड, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट्स हैपनिंग एट राहुल गांधीज रेसिडेंस. बट माय कॉलीग शिव अरूर स्पोक टू वन वुमन. She became the picture of the day when yesterday in the rain in Mumbai, she stood in front of a police van which was taking the protesters away. This is what she had to say.
3: And the woman in that picture that has gone explosively viral from Mumbai is 27-year-old Riya Ahir of Mumbai. Riya, welcome. Good to have you here on NDTV. A very, very compelling image of you standing in front of that police van, which was filled with protesters as you stood there. I want to start by asking you, Riya, you know, how that happened. What was going on that you went up there and stopped that van? Tell us about how it happened.
4: Well, as every student and citizen in India who wants to join the movement, I had the opportunity to be on ground. I was there on 21st as well, but 22nd is something that will stay with me and everyone. So I was there at 4:30 at Kohinoor Building, which is near Shiv Sena office and the Shivaji Park. I was waiting for my friends there, and because it's kind of scary to go alone in such a huge crowd, and with what's happening around the world, it's better to be in a group and unite everyone. So I was just waiting for my friends, and then I could hear the slogans and the chanting from afar, and it was just so exhilarating to even hear it. I couldn't wait. I couldn't help myself. You know, I was like, I'm wasting my time waiting for my friends. You know, I would rather be there doing what I'm supposed to be doing. So first I uploaded an Instagram story. So I was like, I'm waiting. I can hear the chants. And I was like, oh, okay, I can't wait any longer. So I started walking towards where I would hear the voices from. And as soon as I left the corner of the building, I saw this van in front of me, a police van,
3: yeah,
4: which was filled with students from the front to the back, the students inside of it. And, you know, they were talking and they were shouting because that clearly indicates that they were there against their will. So, and it was so filled that the cops were standing on the stairs. So I did not think much at that minute. I was like, if I'm going to go there and chant, I'd rather start here. This is what I'm here for.
3: Hmm.
4: So I went straight up to the cops and I was like, do you have a memo? I did my homework. One thing I'll tell everyone, that it's amazing that all of us want to be a part of it, but know your rights, do your homework. So I asked the cops, like, do you have a memo to take these students? And he reluctantly goes like, mm-mm. He nodded his head, and I was like, I immediately knew they are wrong and I am right. So it fueled, my

0: Rahul Gandhi's residence. It's the meeting started at 6 p.m. and it's just gotten over. We are learning that the opposition MPs will be holding a candle vigil at Rajghat. Amid all of this, security has also been beefed up outside Rahul Gandhi's residence. This, of course, comes at a time when the opposition Congress leader Rahul Gandhi is adamant on the education minister Dharmendra Pradhan's resignation. What we're learning is that crucial meeting of Rahul Gandhi with the Congress MPs at Rahul Gandhi's residence at Lutyens, Delhi has just gotten over. And the opposition MPs will be holding a candle vigil at Rajghat. I'll go across to my reporter, Kanika. Kanika, what are you learning? We're learning that the opposition MPs will be holding a candle vigil at Rajghat and the meet is over. Kanika.
1: देखिए बिल्कुल इंडिया टुडे नेताओं की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे आपको कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। राहुल गांधी के रेसिडेंस के बाहर जो है ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो है बस में तमाम जो नेता है इंडिया गठबंधन के उनको फिलहाल बिठाया गया है। और इसके अलावा जो है गांधी स्मृति की तरफ जो है तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है वापस है वो यहाँ पे लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से लगातार पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर है। बैनर देखिए पोस्टर बैनर के तहत जो है यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तमाम जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स है कांग्रेस के वर्कर्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए किस तरह से तमाम वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए पूछ लेते हैं एक बार इमरान प्रतापगढ़ी में इस वक्त है। इमरान जी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या?
2: हमारी सिर्फ एक डिमांड है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक आगे कोई बातचीत नहीं। बच्चों की मौत हुई है उसके गुनहगारों को जब तक सजा नहीं तब तक अपोजिशन चुप नहीं बैठे।
1: लेकिन सरकार बोलने के लिए डिस्कशन करने के तैयार है, वो लोग चर्चा की मांग के लिए तैयार है।
2: पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें उसके बाद डिस्कशन करें। हम डिस्कशन करें,
1: मार्च करेंगे, इंडिया गेट जाएंगे।
2: हम आपके सामने हैं, देखिए क्या करते हैं।
1: देखिए इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन तमाम जो वर्कर्स है वो यहाँ पे लगातार गैदर हो रखे हैं। इसके अलावा जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो की एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जो है तीन बसेस जो है देखिए किस तरह से वो तीन बसेस जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी जिसमें तमाम जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। और इसके अलावा जो है कहा जा रहा है कि गांधी स्मृति की तरफ जो है ये तमाम जो नेता है वो आगे जाएंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अब से दो दिन तीन दिन पहले जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था और आज ये इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ बुलाया गया है। कुमारी शैलजा है, मैम आप लोग क्या प्रोटेस्ट करने वाले हैं?
3: जी बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट है आप देख रहे हैं।
1: मैम एक चीज बताइए, आप लोग क्या गांधी स्मृति जाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे आप लोग? कैंडल मार्च करेंगे
3: या बस? आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, हमारा मार्च जारी रहेगा। हमारा मार्च
1: क्या मांगे मैम, जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक लड़ते रहेंगे?
3: बिल्कुल कई चीजें हैं, कई चीजें।
1: देखिए साफ तौर पे कांग्रेस की सांसद है कुमारी शैलजा, उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से जो तमाम बसेस है वो पहले से यहाँ पर

0: गई थी। तीन बसेस जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो रखी है। इसके अंदर तमाम जो कांग्रेस के एमपी है, इसके अलावा इंडिया
1: में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, राहुल गांधी हैज जस्ट ट्वीटेड राइट नाउ, आई एम रीडिंग ऑन व्हाट ही सेज, MPs and leaders of the I India Alliance are peacefully heading to Gandhi Smriti on Tis Marg. We go to remember the students we lost, the children driven to take their own lives after the NEET paper leak, and we go to stand with the students who lie injured today and beaten for peacefully demanding justice and accountability. Rahul Gandhi goes on to say that the students of India are not alone and the entire opposition stands with them and their demands. This at a time when that NEET with the opposition MPs, the Congress MPs with Rahul Gandhi has gotten over. What we're seeing right now, the live visuals outside Rahul Gandhi's residence, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are leading that candle vigil, that march to Gandhi Smriti. Rahul Gandhi says that this march is for the students who killed themselves because of the NEET paper leak, and is also after the July 20th protests which turned violent. But Rahul Gandhi says that the opposition is now standing with the students who got injured while the clashes broke out between the police personnel and the students. Remember, we are showing you live visuals outside Rahul Gandhi's residence. The core demand of the opposition right now, of course, remains the resignation of Dharmendra Pradhan. This at a time the centre has time and again said that we will hold that conversation on the NEET paper leak in Parliament. Multiple outreach to the CJP regarding a dialogue, but the CJP remains adamant, and right now Rahul Gandhi leading that march candlelight vigil to Gandhi Smriti on 30 January Marg. I'm going back to my colleague Kanika. Kanika, abhi wahan kya ho raha hai? Hame visuals aa rahe hain ki Rahul Gandhi wo ja rahe hain Gandhi Smriti abhi. Kanika,
0: मार्च तो नहीं है लेकिन बसेस में तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम जो तीन बसेस है वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद है वो यहाँ मौजूद है। राहुल गांधी इस बस में है, यानी कि तीन बसों के जरिए जो है गांधी स्मृति जाया जाएगा, और उसके बाद वहां पर एक पैदल मार्च करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ किशोरी लाल शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के सांसद है। सर, आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर? देखिए, तमाम जो नेता है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और साफ तौर पर कैंडल मार्च तो नहीं है लेकिन बसेस में तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिया ब्लॉक के जो नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते किस तरह से केसी वेणुगोपाल जो है आपको फ्रंट सीट पर दिखाई देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इवन सोनिया गांधी भी इस बस में सवार है, और इसके अलावा जो बाकी इंडिया गठबंधन के नेता है उनको भी यहाँ पे बिठाया गया है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि यहाँ से इन तीन बसेस में गांधी स्मृति जो है वो तमाम सांसद पहुंचेंगे, और वहां पर एक मार्च करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जाएगी। इसके अलावा देखिए तमाम जो कांग्रेस के सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। लगातार जो है पेपर लीक को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उसको लेकर तमाम आज कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठा किया गया। देखिए, पूरी प्लानिंग के तहत ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया। पार्लियामेंट से निकलने के बाद एक मैसेज गया जिसमें तमाम सांसदों को राहुल गांधी की आवाज़ पर बुलाया गया, और अब यहाँ से तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद है, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लगातार इकट्ठे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। अजय माकन से बात कर लेते हैं। सर, आप लोग जो मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है हम चर्चा के तैयार है, आप चर्चा नहीं चाहते?
2: नहीं, मांग क्या, हमारी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जो दिल्ली के अंदर छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किया, पुलिस की जो जांचें हुई हैं, प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ऐसा सिर्फ डिस्कशन करके छोड़ दे उसका कोई मतलब नहीं है, जिम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए।
0: सर, एक और सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पे पूरी कार्रवाई होगी, अपेक्स कोर बनाने की मांग भी की है, तमाम चीजें बोल रही सरकार।
2: इससे पहले 13 साल में कभी कार्रवाई करी है उन्होंने? कभी उन्होंने जो बोला है वो किया है?
0: तो जब तक ये रेजिग्नेशन नहीं होगा तक ये मांग चल
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है। देखिए, अजय माकन कांग्रेस के ट्रेजरार हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक जो डिमांड कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की जो डिमांड की जा रही है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी, जब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कांग्रेस नहीं रुकेगी, ऐसी प्रोटेस्ट करती रहेगी। लेकिन देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, कई जगहों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता,

0: है वो इस वक्त मौजूद है। बस में देख सकते हैं किस तरह से केसी वेणुगोपाल जो है वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा फ्रंट सीट पे राहुल गांधी खुद बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इंडिया गठबंधन के नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। दो तीन दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ वो कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, लेकिन ये इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट है और इसीलिए गांधी स्मृति को बढ़ने के लिए तमाम जो नेता है वो बस में सवार है और लगातार एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो की जा रही है। ओवर टू यू।
1: ये जो हम अभी देख रहे हैं नीट पेपर लीक पर डिस्कशन करेंगे, वो सेंटर ने बार बार कहा है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अश्योरेंस दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, बट ऑपोजिशन की एक ही डिमांड है जिसमें वो बिल्कुल खड़े उतरे हैं कि वो चाहते हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। ये एक साइड है, जबकि सेंटर ने कहा है कि हम डिस्कशन करेंगे और ये पार्लियामेंट में भी लेके आएंगे। जो हम आज देख रहे हैं वो एक दिन बाद हो रहा है, जब राहुल गांधी ने वो धरना किया प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के बाहर। बट अभी बताइए क्या चल रहा है उधर, हम देख सकते हैं लाइव विजुअल्स, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सारे ऑपोजिशन एमपीज, इवन केसी वेणुगोपाल जा रहे हैं गांधी स्मृति और वहां पे एक मार्च करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये उन सब बच्चों के लिए है जिनने अपनी जान ली बिकॉज ऑफ नीट पेपर लीक करने का।
0: देखा जाए तो बिल्कुल सरकार लगातार ये बोल चुकी है कि हम चर्चा करवाने को तैयार हैं, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक वो इस मांग को जारी रखेंगे। जिस तरह से सरकार ने आज सुबह बोला कि वो संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में एग्री करती है डिस्कशन के लिए, बल्कि किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि समय और कितना समय होना चाहिए ये सब कुछ फैसले जो है ऑपोजिशन कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो यही डिमांड कर रहा है कि पहले रेजिग्नेशन हो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, वो देखिए बस जो है वो आगे बढ़ रही है जिसमें आपको राहुल गांधी जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा तमाम देखिए राहुल गांधी जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे, फ्रंट में बैठे हुए हैं। उसके अलावा तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के नेता है वो भी यहाँ पे लगातार मौजूद है और देखिए कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेपर लीक मामले को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो यहाँ पे की जा रही है। देखिए राहुल गांधी के बगल में मीसा भारती जो कि आरजेडी की सांसद है वो यहाँ बैठी हुई है, केसी वेणुगोपाल सामने खड़े हैं, इसके अलावा पीछे तमाम जो नेता है वो मौजूद है और बस आगे बढ़ रही है। तमाम यानी कि तीन बसेस है जिनके तहत आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड कर दिया है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी जो है इस पूरे एरिया में की गई है। इससे पहले तमाम जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद कर दिए गए थे ताकि किस तरह का प्रोटेस्ट ना हो सके, लेकिन फिलहाल बस आगे बढ़ने वाली क्योंकि बहुत जाम है। और इसके अलावा आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पे, इसके अलावा आरएएफ जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। किस तरह से देखिए तमाम रास्तों को रोक दिया गया, लेकिन तस्वीर दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से बोलूंगी एक बार दिखाए कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो बस में आगे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। राहुल गांधी के साथ मीसा भारती है, उसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। यानी कि पेपर लीक को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन कलेक्टिव होके धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनके रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो कर रहा है और इसीलिए लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। बसेस में तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिया गठबंधन नेता है, वो आगे बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि गांधी स्मृति पहुंचने के बाद अंदर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। ओवर टू यू।
1: हम जो अभी देख रहे हैं राहुल गांधी और सारे ऑपोजिशन एमपीज एक साथ गांधी मार्ग जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वहाँ पे जो हम मार्च करेंगे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनने अपनी जान ली, एंड ऑल्सो सारे स्टूडेंट्स जो इंजर्ड हुए मंडे के प्रोटेस्ट में। बट कनिका, अब ये भी देखा जा रहा है कि ये इशू नीट पेपर लीक का बहुत पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि सेंटर ने कहा है कि हम चर्चा करेंगे संसद पे, पर अब INDIA ब्लॉक के सारे ऑपोजिशन एमपीज एक ही डिमांड करें रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। क्या हमें अब लगता है कि द कोर इशू ऑफ स्टूडेंट्स कहीं बैरियर हो चुका है, कहीं घूम हो चुका है, क्योंकि अब सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो साथ में आ गए हैं विद द इशू, अब बहुत पॉलिटिकल

0: has been done.
1: Hmm.
0: Now Mr. Anand can set up another tent. And then he can do that, or
2: your tent is only to demand.
1: But यही है ना agenda BJP का, तो NCRA से डर रहे क्या? Okay, let's
0: just as Anand said, I said that I demand the resignation of all.
1: Okay, and what is lady? And what is the hidden agenda?
2: डर के मारे बोल रहे हो?
0: No, डर किसे?
2: केजरीवाल से क्यों डर रहे थे भाई?
0: Why would I be afraid of anyone? बोलो ना. विजेता is an independent guy. विजेता is not afraid of anyone.
2: Answer the question.
1: बताइए.
0: Even after this authority, ask the people.
2: This lady. Just 10 seconds. This lady, wonderful lady, was following CJP.
1: Hmm.
2: Do you want the resignation of Harjot Singh and Bangarappa?
3: Yes.
2: There you go.
0: So I am also saying it. One
2: second. Do you think, is there any bite of CJP, any leader, including Vijeta,
0: no,
2: that demands the resignation of Bangarappa?
1: Sir, yes, my problem is there it is, honestly, it is not second. About CJP. It is about the issue of education.
0: Yes, exactly.
1: And as a government, as a student, we expect the government to start from the top.
2: Yes.
1: We expect the leadership, we expect the current government will start from the
2: current
1: top. And
2: Karnataka
1: that will
2: government.
0: It is
1: any current
2: government.
1: Current
2: central government.
1: Any current government.
2: Why are you sparing some people? That's the only simple question.
0: Anand, people are tired of this BJP Congress.
1: Just a second.
0: People, no, people are tired of me. People are tired of this rhetoric.
1: Ma'am, tell me.
0: Let things get to somewhere.
1: I am Twinkle and I graduated MBA from IIM Raipur and did my bachelor's in economics from Symbiosis Pune.
3: Okay.
4: So, you know, I think what Twinkle is trying to say, what she is saying, Harshvardhan ji, ki सरकार केंद्र सरकार से शुरुआत कीजिए ना पहले धर्मेंद्र प्रधान लेट हिम सेट एन एग्जाम्पल एंड से आई टेक अकाउंटेबिलिटी एंड टुमारो देन ट्विंकल विल गो बैक टू जंतर मंतर एंड से कि हरजोत जी अब आप भी लीजिए अकाउंटेबिलिटी क्या ये मांगना गलत है
0: ट्विंकल आज कह रही है
4: शुरुआत केंद्र से कीजिए देन द डोमिनोस विल स्टार्ट
1: फॉलोइंग
4: ओके ओके one question at a time
0: I'm saying again let all three resign what more do you want to hear
4: one at a time please just a second Harshvardhan ji
0: Dharmendra
4: Pradhan shuruaat kare Harshvardhan ji
5: ट्विंकल आपने नाम बताया ना बिल्कुल जो ट्विंकल कह रही है मैं उनके साथ खड़ा हूँ
1: डेफिनेटली थैंक यू सर
5: इनके ऊपर सवाल नहीं है ना सवाल उस मूवमेंट पर है जो कॉकरोचेज के नाम पर वहां इकट्ठा किया गया
1: exactly.
5: जो तंबू लगाया गया है उस पर सवाल है
1: सर
5: और एक एक मिनट मैंने आपकी बात सुनी लेट मी कंप्लीट जब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो सीजीआई की एक टिप्पणी एक कमेंट ऐसा था जिस पर लोगों को लगा कि ये यूथ के ऊपर है उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया तो ये नीट पर गए अगर नीट पर गए तो रीट पर क्यों नहीं गए अगर रीट पर गए तो पंजाब पर क्यों नहीं गए अगर पंजाब पर गए तो ये कहीं नहीं गए क्योंकि ये मूवमेंट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का मुखौटा आंदोलन है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की साख पूरी तरह से दिल्ली में खत्म थी उनको समझ में नहीं आ रहा था दिल्ली कैसे आए मुंह छिपाकर पंजाब में थे ये रास्ता अपना बच्चों को बदलाया गया
1: I'll clarify.
3: I think a very important point is now being raised by that lady.
4: Twinkle said something.
0: That paper leaks must be stopped.
4: Just a second. Yeah, Twinkle said something.
6: Sir, as you mentioned, my name is Sanskriti Singh. I am a political science graduate and I am pursuing political science in my master's. Sir, अभी आपने ये बोला कि आप उस स्टेज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे. Sir, ये पूरा issue student से हट के पॉलिटिसाइज हो चुका है. No one is talking about the student issues. कहाँ पे आपने बात करी? एक भी आपने बात करी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए. सर, पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात आपने कहाँ करी थी? पहले दिन से आपने ये बात नहीं. सर, मैंने एक बात नहीं देखी. सर, पंजाब सर इतने दिन से प्रोटेस्ट हुआ, एक दिन भी मैंने ये नहीं देखा कि पंजाब में जब हुआ किसी ने एक बाइट दी हो. किसी ने नहीं बोला उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए कि पंजाब में भी पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र टेट के पेपर लीक हुए हैं, सिर्फ नीट के नहीं.
5: पंजाब पुलिस ने बच्चों पर लाठी चार्ज किया. पंजाब
6: किसी ने बात नहीं करी सर. ये बात सिर्फ नीट की
0: नहीं,
6: किसी ने सबने साइडलाइन कर दिया.
2: नेता बनना तो बनो ना
6: जी.
2: किसने रोका है?
6: नेता बनने का प्लेटफॉर्म बन गया.
2: बना था दैया बन गया.
0: न्यूज़ 18 इंटरव्यू यू कैन चेक इट.
4: I want to ask a direct question to Tehseen Poonawala also. In addition to the examples being given here of how no mention was made of Punjab or Karnataka, the other issue also is ki aap kabhi kisi solution ki baat nahi kar rahe. This is, you know what happens is, just second, the question is to Tehseen.

0: पार्टी के नाम पर देश के यूथ को उसी ब्रैकेट में करना, ये इससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का यूथ, इस देश को जो डेमोक्रेसी है, जो वाइब्रेंसी है, उसने बरकरार रखी है, वरना कोई भी नेता तानाशाह हो जाता। इंदिरा गांधी की बात किसी ने हिम्मत नहीं की। और ये मूवमेंट सीजेपी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल स्पॉन्सर्ड, प्लांड, मैनेज।
1: ओके, दिस यंग लेडी हियर, लेट मी गिव यू अ स्मॉल स्टैटिस्टिक। टुडे यू आर सेइंग तहसीन दैट अशोक गहलोत, यू नो दैट मधु बंगारप्पा शुड गो। डू यू नो दैट 14 आउट ऑफ 26 पेपर लीक्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट हैपेंड अंडर द वॉच ऑफ अशोक गहलोत?
2: यस इट डिड,
1: बट यू नेवर ब्रॉट दिस अप।
2: आई डिड,
1: नीदर बिफोर टुडे, नीदर बिफोर दिस प्लेटफॉर्म, नीदर
2: जस्ट वन सेकंड,
3: प्रियंका डिड,
1: नोबडी,
2: वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, सिंस यू आस्क्ड मी,
1: एंड जस्ट बाय द वे, बाय द वे, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट बिकॉज़ दिस विल बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। Yes, paper leaks, those 14 have happened on his watch. And yes, some changes have been made. Laws have been brought in various states to try and combat paper leaks. But it is not a foolproof, bulletproof method, despite all of those changes. And which is why we should have this conversation.
2: One second. Just one second. No. One second.
0: Rahul Gandhi ko.
2: Don't allow me to respond. I'll take 10 seconds.
1: Only take 10 seconds.
0: Only 10 seconds.
2: I don't speak either for the Congress or I don't care about it. My limited point is, if the BJP thinks that Congress has done something wrong, nobody stopped the BJP from protesting. They must protest. It is their duty to protest. Don't come here and do whataboutry on these kids and call them up. These are not up kids.
3: Why aren't you? Why are the apolitical people not protesting? So why is apolitical?
2: Did the apolitical people go and say, "Ab ki baar hamari sarkar"? Did they go and say?
3: What do you mean?
1: Hamari apolitical
2: people for votes.
3: Karnataka, puchho. Karnataka ke bachcho ke liye rote kyun nahi ho?
2: And I think
3: Punjab ke bachche nahi hai bachche.
2: I think bachche hai.
3: Punjab ke bachche nahi hai. Unke liye kyun nahi rote?
1: One at a time.
3: Bhaiya kyun bane hua Punjab ke bachcho ke liye?
1: One at a time. Bachche nahi hai.
0: Sare bachche.
3: Sharam nahi aa rahi.
0: Ek second. Sare bachchon ke liye parliament mein debate kara lo.
3: Bachcho ko ignore kyun kar rahe
0: ho? Sare bachchon ke liye parliament mein debate kara lo.
1: Let me come in here and say one thing. You know, when you say,
3: हाँ, और से भी कमाई हो सकती है।
2: क्या हो गया अगर वो बारहवीं पास है यार? तो
3: मैं क्या रहूँ?
2: तो क्या हुआ बारहवीं पास है? बेईमान नहीं है?
1: Just a second.
2: ये तो है।
1: Give this young lady will speak, sir please.
2: उसमें कोई गलत नहीं है।
1: This young lady will speak, but before that, I want to take 10 seconds to say when it is said. Just a second. When you say कि सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, विजेता, one second. When you say that, you know, all of these should be discussed and BJP should do it. But you started by saying that we are here for Team India. So that is why you should speak for all of India, including what happened under Ashok Gehlot, because ये Team India. बोलिए, अपना नाम बताइए.
4: Myself, Arpita Menaria. I'm an assistant professor. आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च स्कॉलर. सो अभी हम लोग सभी डिबेट कर रहे हैं, छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं. क्या हम में से कोई देश की बात कर रहा है? ये वही छात्र है जो इस देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं. हमारे जो पुलिस है, जो कानून को रक्षक जो वहाँ खड़े हो, उनकी रक्षा के लिए भी खड़े हैं वहाँ पर, ताकि प्रोटेस्ट में कहीं उनकी जान हानि को कोई नुकसान ना पहुँचे, उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है. राजनीतिक दल से, हर राजनीतिक दल से कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा है. वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े, इनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं. जब वो छात्र लाठियां खा रहे

0: And this behavior should not be condoned.
1: No, no, Padamja.
0: By some.
1: Padamja, yeah.
0: Vijeta.
1: See, ever since the beginning, I at least repeated hundreds of times, even Sonam sir, Abhijit, everyone, that, you know, India cannot be like Nepal or Bangladesh. We have to show the way to the world that change can be brought through peaceful resistance. Now. See, the problem what happens is that whenever someone tries to do something, you put such a big scanner, such a big magnifying lens that nobody will even dare to do anything. Of course, it is something.
0: This is a legitimate.
1: We are not a political party with thousands or.
2: So listen to me. अगर आप leader हैं तो लोग आपको follow करेंगे. जितने लोग आप CJP को इतने लोग Instagram पर follow कर रहे हैं. क्या उनकी एक बात अगर वो लोगों से ये गुहार कर रहे हैं कि आप आओ हम नीट के लिए आपके साथ खड़े हैं, paper leak के मामले में आपके साथ खड़े हैं, सब लोग पीछे हो गए. जब उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, अहिंसा मत फैलाओ, तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? फिर आप लीडर किस बात के हैं? आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी
1: कैसे आपकी बात सुनेंगे?
2: Like in what world? In what world are we living?
1: The best I can do.
3: There's a different
1: the best I can
3: pressure group and a political government.
0: Okay, no. So here's the thing. Okay. Harshvardhan ji,
2: sir, आप मुझे बताएं, आपने अपने social media पे एक भी video बनाई जिसमें आप कह रहे हो कि
1: the anger of students is because of the failure of government.
2: मैं राजनीतिक नेताओं को छोड़ देती हूँ.
1: The anger of students is because of the failures of the government. And the problems that happened, it was because of failure of the police.
4: No.
2: Sir, anger is
4: abhi
0: of the government. Harshvardhan ji.
1: Of the government.
4: Karna. Government.
1: Blame everything.
0: Rural. Harshvardhan ji.
5: Mujhe lagta hai.
0: Okay, ek second. This
5: mujhe lagta hai ye bahut important, bahut bahut bahut important point aapne kaha.
0: Ek second. Harshvardhan ji jawab denge Arpita ko.
5: Itna important point hai. Ye activist the. छात्र पिटे, पुलिस पिटी, मीडिया पिटा, लेकिन कोई भी अनशन पर नहीं बैठा. इतने ये सेंसिटिव एक्टिविस्ट हैं, छात्र पिटे, पुलिस पिटी, मीडिया पिटा, लेकिन इनमें से कोई अनशन पर नहीं बैठा. बर्गर खाना बुरी बात नहीं
1: है,
5: बर्गर खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई नहीं बैठा. और फिर मैं कह रहा हूँ जब आप कह रहे हैं कि लाखों लोग आए, हम उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? पन्मजा ये कह रहे हैं लाखों लोग आए, हम उनको कम्युनिकेट कैसे कहते हैं? ना भैया, चद्दर पाँव उतने ही पसारो जितनी चद्दर है. अगर ये नहीं थी, औकात नहीं थी इतनी, तो इस तरह से एनआरकी के लिए क्यों बुलाया?
0: लेकिन हर्षवर्धन जी, Harshvardhan ji, this young lady is saying pressure group or political party ko aap ek hi paimane se nahi naap sakte.
5: They should not behave like a political party. They are behaving like a political party.
1: We are not.
5: They are behaving like a political party. Cockroach Janata Party from the day one. They are behaving like a political party. They are saying we are not going to you.
0: Okay, Dr. Rangan.
1: It's a meme, a satire.
4: There is absolutely nothing wrong with any pressure cooker, I was going to say pressure group, yeah, becoming a political party or carrying political insults. Nothing wrong with it. Definitely. Okay? I would walk with Rahul Gandhi. I would even vote for him. I'm a nota vote. I vote for him if he were to say that any minister under whose watch these things have happened should resign. Well, please let me finish. The problem is the double standards. The problem is that in some states, there are children who are not cared for by the same people. And the paper leaks, the OSM ghapla, the beatings of teachers and students happened much before Pradhan came into the bullseye. Problem is why no action was taken against those education. अब बोल रहे हो क्योंकि कल से जब मैं बोल रहा हूँ, बंगारप्पा का नाम भी नहीं पता था इनको. इसको तो राधा कृष्णन का नाम नहीं पता.
0: One more young person here.
4: Don't interrupt. यार, you are not a politician yet. रुक जाओ, सुन जाओ. राघव चड्ढा बन गया राज्यसभा MP. सुनो, बात सुनो. The problem is not कि कोई लोग नाच गाना करते हैं, बर्गर खाते हैं. Problem is राधा कृष्णन का नाम नहीं पता है. ये कैसे लड़ रहा है मुद्दों के लिए यार?
0: Okay, एक सेकंड विजेता, इससे पहले कि आप जवाब दें,
4: थोड़ा पढ़ लिख लो.
1: We are not putting the issues.
4: पढ़ लिख लो यार, अगर छोड़ दिया.
1: अरे सर, आप बहुत
4: पेपर लीक से पास हो गए, वो अलग बात है.
1: आप दूसरों को बोलने नहीं देते. We made it a popular issue.
2: I have a very valid question. I truly understand कि आपका जो कॉज था वो स्टूडेंट्स के लिए था. I respect everyone sitting here respect because we are standing here for nation, right? वो एंटी नेशनल मोमेंट तब बना जब ऐसा बोला गया कि लेफ्टिस्ट ज्यादा हैं और राइट विंगर्स हैं नहीं. तो सर ने अभी एक बात,
1: भगत सिंह वॉज अ लेफ्टिस्ट.
2: लिसन फर्स्ट,
1: भगत सिंह
2: सर ने बोला

0: he was my very close friend, and he did committed suicide due to his studies and educational kind of pressure. So I am very emotionally attached to this protest, and I am really going through it right now.
1: आपको क्या कहना आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो डिमांड्स रखे गए हैं सामने अभी आप भी एक स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट थी आपका क्या डिमांड है
2: देखिए हम तो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है उनको ये करना चाहिए क्योंकि एक इंसान चीज़ों को लेकर के लड़ सकता है पर यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं तो उनको इस्तीफ़ा देना होगा वो इस्तीफ़ा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि देखो सारे लोग फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं और एक दिन से नहीं कई दिन से बैठे हुए हैं
3: आई टेल यू सर वन थिंग मैं एक बात बताता हूँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे जो भी बैठा है चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है इफ इज स्टूडेंट और नॉट वी आर हेयर फॉर द चेंज हम बदलाव के लिए आए हैं हजारों स्टूडेंट अपनी जान लगा रहे हैं ये स्टूडेंट है मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे हम क्यों हैं यहाँ पे ये भी
4: मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कॉरपोरेट मजदूर हूँ और हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 3-4 दिन हो गए इन लोगों ने नेटवर्क बंद कर दिया है कि घर तक फोन ना करें हम लोग नेट बंद है वीडियो नहीं जा रही है कॉल तक नहीं लग रही है ये लोग कैसे भी डरा ले पर हम नहीं डरेंगे चाहे कुछ भी कर ले हम यहीं लगाए रहेंगे यहीं रहेंगे
3: दिल्ली पुलिस ने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं चाहे कोई भी हो आप स्टूडेंट हैं हम यहाँ पे एक अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट से डिमांड रखने आए हैं और आपकी बड़बड़ता ये है कि आप हमें लठ मार रहे हैं लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर हम इस देश के युवा हैं हम इस देश का मुस्तकबिल हैं और हमारे ऊपर ये सलूक हो रहा है कि हमें एक
1: मैडम आइए
3: क्या समझा रखा है
5: महिलाओं को तो बड़बड़ता के साथ उन्होंने कुछ
1: पूछा है दिस यंग लेडी हैज ब्रॉट हर लिटिल चाइल्ड हियर हू इज हियर ओके एंड लेट मी होल्ड हिम He's a little guy here who's come up here and he's holding a placard of his own. So a little boy here with his mother. Let's talk to his mother. Benji, aap kyon aaye hain yahan par? Aapka kya message hai government ko, sarkar ko? Aapka chhota bachcha hai.
6: मैं इसलिए आई हूँ हम सब तो पढ़े लिखे हैं और ये अभी ये जो लड़ रहे लड़ाई है इन लोगों के लिए इनका फ्यूचर बहुत ख़राब होगा और ये चलता रहेगा अगर अभी नहीं रुका ये तो कभी नहीं रुकेगा क्योंकि ये नीट का पेपर बहुत टाइम से चलता आ रहा लीक लीक लीक अरे मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो रेंट पे रहेंगे पढ़ाई करेंगे अब लीक का पेपर ये झेलेंगे लोग मर रहे अलग अलग से मर रहे फांसी लगा के मर रहे रोड पे मर रहे घर पे मर रहे तो क्यों मरेंगे इसके जिम्मेदार कौन है मोदी है तो फ्यूचर किसके पास है मोदी के पास है इसलिए मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि मेरे बच्चे का फ्यूचर मोदी के पास है मोदी इस्तीफा दो
1: ओके सो द एंगर हियर द मैसेजिंग हियर द इमोशंस हियर cannot be you can't misinterpret it you can have a view of it you can say that there are people who have different views divergent views colored views political views but these are views that are deafeningly loud and they can't be simply swept under the carpet by getting you a sample of the voices that we've seen here at Jantar Mantar I think the issue which I don't even need to communicate anymore is that the rules of engagement have completely changed everywhere we walk here at Jantar Mantar there are voices there are sounds and there are people here again you can see a small little nukkad natak happening here impromptu messaging that's taking place there you got it here they're talking about lathi charge and alleged excesses of the Delhi police many of those things caught on camera as well former chief minister of Jammu and Kashmir Mehbooba Mufti ji is here with us she was on stage just a moment ago you're looking at this huge crowd madam your first impressions of this incredible amount of youth anger this is very real there have been allegations of plenty of politicization etc but this is very real I've just been in the crowd and I've just come out of it
7: I think this is real India ye wo hindustan hai jisse hum kashmiriyon ne हाथ जोड़ा है दे आर द इंडिया दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री और इनको चीट करना इफ एनीबडी ट्राइज टू चीट देम ही इज नॉट गोइंग टू स्टे इन पावर फॉर अ लॉन्गर पीरियड सो दे आर द वंस हु आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू ब्रेक द फियर्स

0: psychosis among people, because they are the people who will build this nation for our future. They are the ones who are going to stop destruction of our constitution, democracy. They are the ones. They are the power.
1: Abhijit Dibke is also here. He's just arrived.
0: Whatever we can do, please let's know. We are there for
1: let's
0: you.
1: Let's bring this a little closer.
0: For the first time after 5th August, our people are, they are beating, their heart is beating for you people.
2: Thank you so much. Thank you so much.
0: So all the best for you.
2: Thank you for all the
0: May God give you success in this, whatever you are doing at this point of time, this protest, and you go home with, flying colors.
2: Thank you so much.
1: Abhijit, we heard you're not well. You're back here. How are you doing?
2: I have fever and too much weakness, but yeah, I got to be here because so many people are coming from different parts of
1: the country. Okay, we've just been in the crowd right now. We've been speaking to a lot of people here. The Prime Minister spoke today. You heard the words that he said about the fast-track courts. How are you reacting to that? Is that a beginning of some engagement, or is it the resignation of the Education Minister that is the starting point?
2: That was a really vague tweet without any concrete action against the real culprit, that is Dharmendra Pradhan. Our demand is very simple and clear, that the Education Minister must resign and no more blood should be shed at Jantar Mantar to protect Dharmendra Pradhan, who is already responsible for the death of more than 20 students.
1: Are there any talks happening right now? Is there a channel of communication that's open right now between your side and the government? One meeting has already taken place. There is a lot of confusion about whether talks are happening towards some kind of an end game on this.
2: Well, they did invite us for talks, I think yesterday or day before yesterday. But what they did last time, that they invited us to have talks and they made Saurav and Ashutosh sit for 5 hours, and in those 5 hours they spoke only for 10 minutes, and we don't want to do that anymore because they were just wasting our time. So if the government wants to have a talk, it won't be happening at any of the minister's house. It will either happen at Jantar Mantar or at any neutral location.
1: Has the government said anything about that demand of yours, that if any talks happen, they can happen at a neutral location or here at Jantar Mantar?
2: No, they called off the talks after that.
1: So as of now, there is no talks on the table. Is there any contact between the government and you at this point of time?
2: No.
1: So what is the next step then? We've seen protests happening in other parts of the country as well. What is the next step as far as this is concerned?
2: I think it will be better for the government if they listen to the people, because right now it's not just Jantar Mantar. There are protests going on in Mumbai, Nashik, Mizoram, Jaipur, Madhya Pradesh, Bangalore, across all India. So if so many people in lakhs of numbers are demanding a resignation of the minister, I don't understand why is it such a big problem for Narendra Modi to sack one education minister. One education minister cannot be more important than lakhs of students.
1: Has Dharmendra Pradhan become symbolic? Because there are people who say that uska jaane se kya hoga, somebody else will come in his place. But, or is it about a signal that this sends out as far as accountability is concerned?
2: Yeah, that's right. It's about fixing the accountability. Whoever comes after Dharmendra Pradhan, he will know that if he messes up, if the paper leaks happen, or if any single student commits suicide, his chair won't be safe.
1: There are pictures that have come out, Abhijit, of Dharmendra Pradhan from 30 years ago, protesting against paper leaks in Orissa, and those pictures of him getting injured there. What did you think when you saw those pictures? The same minister all those years ago protesting against paper leaks.
2: I think then he should join us at Jantar Mantar.
1: If Dharmendra Pradhan decides to come here, would you welcome him?
2: Of course, we would welcome him. We will also prepare his resignation letter. All he will need to do is sign it.
1: Okay. Thanks, Abhijit. Abhijit Dibke, who was apparently unwell, so he missed most of today, and he's here. Finally, once again, there is a person looking like Gandhiji who has also appeared. And I saw a meme earlier on the internet today saying that if even Gandhi has come here, then you know that these people are here are serious. But the energy is only rising here at Jantar Mantar. And the crowds that both Mehbooba Mufti and Abhijit Dibke were referring to are these crowds. These are the people that they're actually talking about. So you can choose to dismiss it, you can say these are not real crowds and this is not organic, but in speech after speech that's going on stage, and the reactions from the people off stage is not something that you can puppeteer. At a time when people are cynical, people wonder about stage-managed events, etc. I'll let you hear it for yourself. Well, last night on India Matters, a young student who has taken NEET multiple times has become one of our most viewed segments all year. Harsh Dubey is a student who's taken NEET. And yesterday, you've seen it on the show because it's got millions of views and gone completely viral. Harsh, aap aa gaye ho aaj hamare saath is protest mein. Kya kehna chahenge? What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday, which everybody is now talking about.
3: देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहें। हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई? सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है। 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा? आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चल रही है। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे। ये मेरे दिमाग में तब आता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ चुके हैं। जब लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता तब एक बच्चा कर पाता है उसको अटेम्प्ट, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। इस चीज को कौन देख रहा है? सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, धर्म क्यों दे इस्तीफा? उसका रीजन बताएं आप लोग बैठ के यहाँ। रीजन ये है कि वहां पर सीटें नहीं है। रीजन ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते दिन रात और क्लास के टॉपर होते हैं, पूरी लाइफ टॉप रहते हैं अपने क्लास में। लेकिन आज जो बच्चे एसएससी में चले गए उनके पास सैकड़ों ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नीट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ का सिलेबस हो? सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ नीट छोड़ दे तो किसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आता है? क्या कुछ हमारे पास और ऑप्शन नहीं होने चाहिए?
1: आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है रिजर्वेशंस और जो मुद्दे आपने उठाया अभी उसको लेकर चर्चा करे, डिसीजन ले रिजर्वेशन को लेकर?
3: सब लोग कोई चर्चा कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ये चिल्लाने से क्या ये चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा करोगी भाई? क्यों इतना सारा है? हर स्टेट को, हर कॉलेज को आप रिजर्व कर रखी है क्यों? जिसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है और मेरे पापा किसान है मैं अमीर हूँ। मेरे पापा खेती में काम करते हैं मैं अमीर हूँ। जिसके पास मर्सिडीज अगर उसके आगे 80 लिख गया तो वो गरीब है। इस बात पर कौन बात कर रहा है यहाँ? मैं आधे घंटे से आया हूँ, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया
4: जो बदतमीजी हो रही है,
3: बदतमीजी क्यों हो रही है? गलत काम कर रही है, गलत काम कर रहे हैं।
4: सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम?
3: इन सभी पॉइंट्स को उठाया जाए, गलत मुद्दों हमें जो बच्चे बच गए हैं, जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए कम से कम उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उन बच्चों की न्याय की मांग कौन कर रहा है?
1: कल के वीडियो के बाद हर्ष आपको बहुत सपोर्ट मिला है, आपने जो बोला है वो सेगमेंट पूरा का पूरा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वायरल हो चुका है एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद क्या क्या कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं बोल रहे हैं कि इसको लेकर एक मोर्चा खड़ा कर दो, इसको लेकर प्रोटेस्ट करो?
3: हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसको लेकर प्रोटेस्ट करो, रियल मुद्दों पर बात करें। हमारे पास सारे रियल मुद्दे होने चाहिए।
1: लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये आप नहीं मानते हैं जो यहाँ पे हो रहा है?
3: हाँ बिल्कुल, रिजाइन दें, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर एक बाप के दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा? मेरे दो बच्चे सुरक्षित बचे रहे? वो ये नहीं चाहेगा कि इन दो बच्चों के पीछे पूरी जान फूंक देगा। वो चाहेगा मेरे दो बच्चे बच गए, पहले इनको देखूंगा मैं। उस पर बात करो, आप पॉइंट्स उठाओ। भाई अभी कौन आया था? कोई मुख्यमंत्री आई थी? भाई मुझे बोलने का मौका दो, प्रॉब्लम्स मेरी हैं। मुख्यमंत्री से मुझे क्या मतलब है? मोदी से मुझे क्या मतलब है? क्या मतलब है मुझे? मुझे
1: जो लोग दिलाओ हर्ष, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है,
3: उनमें
1: हिम्मत नहीं है इस मुद्दे को उठाकर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करें।
3: प्रॉब्लम ये है ना गवर्नमेंट,
1: वो कहते हैं ये, क्या आप अग्री करते हैं उसको लेकर?
3: हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है।
1: उनको तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा?
3: तो आप सीटी डबल करो, कैसे कर सकते हैं? सुनो, क्या एक बच्चा जो आज 4 साल बाद कॉलेज से निकलेगा कि नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी करेगा, नाइट में भी ड्यूटी करेगा, तो क्या वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में पढ़ नहीं सकता है? सारे कॉलेज अगर 2 शिफ्ट में कर दी जाएगा, डायरेक्ट डबल सीट हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ हॉस्टल बनवाने हैं, सिर्फ हॉस्टल बनवाने, उसी क्लास में, उसी बेंच में, उसी लाइब्रेरी में, उसी बॉडी पे वही बच्चा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, वही बच्चा शाम को कर रहा है, क्या डबल सीटें हो जाएंगी तुरंत? जो बच्चा आज के 4 साल बाद 24 घंटे की ड्यूटी देगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर लेगा, वो क्या 4 साल पहले अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट करने के लिए दिन और रात में नहीं पढ़ाई कर पाएगा?
1: तो आप क्या बोलेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं अभी, उनका ध्यान अभी जंतर मंतर पर है, जहां पर
3: इसीलिए तो जंतर मंतर
1: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 2 को लेकर वो है डोमिनेंट नारा यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर। आप एक नीट स्टूडेंट है, तो ये जो आप जो रेज कर रहे हैं वो मुद्दा, वो सामने कैसे आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, ऑपोजिशन को भी पता है कि ये मुद्दा क्या है, ये तो सालों से पता है कि ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है। वो नहीं उठाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर?
3: तो मुझे भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मैं तभी साथ दूंगा जब रियल मुद्दों पर बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा है कि वो उसका बहुत छोटा पॉइंट है, हम इसको सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं और रियल मुद्दों को छोटा बना रहे हैं।
5: रियल मुद्दा है क्या?
3: रियल मुद्दा ये है कि बच्चों को सीटें मिले, गवर्नमेंट के डबल सीटें, रियल मुद्दा भाई नीट में डबल सीटें हो जाए, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है?
1: तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अगर आप आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि समवेयर इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, जो इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी आवाज सुन रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं मोर्चा खड़ा कर दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, है ना? आपने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे?
3: मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अगर आपको रिजर्वेशन देना है, आप स्टेट वाइज दे रहे हैं, आप कॉलेज वाइज दे रहे हैं, कास्ट वाइज दे रहे हैं, गरीबों को रिजर्वेशन दो भाई। एक बच्चा जो जिसका पापा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से है, क्या उसका पापा क्या उसको भी तो कॉलेज मिलना चाहिए? आप गवर्नमेंट की डबल सीटें करो। अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, जैसे MP में प्राइवेट सीटों पे, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे करती है 50%, क्या ये ऑल इंडिया में नहीं हो सकता? ये काम ऑल इंडिया में हो सकता है, 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, ताकि उन बच्चों को भी, जो गरीब बच्चे भी हैं, जो वो भी उस कॉलेज में जा सके।
1: अभी रिसेंटली वो UGC गाइडलाइन सामने आए थे, उसको लेकर काफी गुस्सा था पब्लिक में, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर? आपको क्या मैसेज आता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग किस दिशा में जा रही है?
3: गवर्नमेंट जो है रियल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो बहकाती है। जैसे भाई साहब हमारे ये है कि हमारे ऊपर चढ़ जा रहा है, नीट का पेपर हमने दिया, इन्होंने दिया नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम पता नीट में क्या प्रॉब्लम है, जरा पूछिए आप।
6: नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि बच्चों, गरीब किसान के बच्चों को या गरीब मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो चीज के लिए
3: किसी को नहीं, मतलब सबके साथ बराबर होना चाहिए, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
6: और EWS इसके लिए सरकार ने बनाया तो है,
3: EWS हमें नहीं मिलता, हमारे लिए नहीं मिलता।
6: आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते नहीं हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग
7: मुद्दा ही नहीं है ना यहाँ पे, मुद्दा तो
6: धर्मेंद्र
7: प्रधान का इस्तीफा है ना,
3: और पेपर है,
7: कितने साल से पेपर लीक हो रहा है।
6: रेस्पॉन्सिबिलिटी
7: धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले की सरकार में होती, पहले की सरकार में होती थी जब हमने आपको लाया ना।
3: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
7: वही चीज कहोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा ना,
3: अब यही बात आप समझ नहीं रहे हो। एक सेकंड, अरे सुनिए,
7: आप रिजर्वेशन के बारे में, एक टाइम तक ना, जो मैं बताता हूँ, एक टाइम को जब लोगों को ना कैसे कैसे हालत में रखते थे, उनको मिलना चाहिए भाई, प्रॉपर मिलना चाहिए। आप कभी,
6: अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उस चीज के
7: उनके साथ कैसा भेदभाव होता है ना। कभी आप गांव में जाओ, आप गांव के नहीं हो, मैं गांव का हूँ, ठीक है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है वो चीजें कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, कैसे उनको नीचे बैठाया जाता है, कि चाय आप वहाँ पियो या कप में पियो, ऐसे ऐसी चीजें होती है। हम ऐसे क्या सरकार में वो है की ईगो पे आ रखा है की हम इस्तीफा नहीं दे सकते?
3: इस्तीफा दे, आप ये मुद्दा छोटा मुद्दा है, इस्तीफा तो दे, वो छोटा मुद्दा है।
6: मैं
3: समझ ही नहीं रहा, बात सेम कर रहे हैं।
7: मैं आपको
3: आप ये बताओ आपके गांव में बहुत सारे गरीब है, ठीक है, कितने एससी एसटी एमबीबीएस हैं आप बताओ?
7: बहुत सारे हैं भाई
3: आपके गांव में,
7: बहुत सारे हैं
3: आपके गांव में एससी एसटी एमबीबीएस हैं?
7: आप कभी
3: मेरे गांव में एक भी नहीं है?
7: क्या चीज एमबीबीएस की बात,
3: एक भी एससी एसटी एमबीबीएस नहीं है
7: भाई? है हमारे गांव में बहुत है, हमने देखा है भाई
1: भेदभाव,
7: हमने और ऐसे नहीं है सर, एक मिनट में बोल, ऐसा नहीं है भाई, देखो अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी सुनो, अकाउंटेबिलिटी
6: इसलिए मांगा जा रहा है, पता चलेगा कि सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है।
3: मैं कह रहा हूँ इस्तीफा दे।
1: ओके
7: मैं आपको बता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए?
1: लास्ट वर्ड हर्ष, हर्ष फाइनल वर्ड जो आप गवर्नमेंट को बोल, भाई एक सेकंड, लास्ट वर्ड आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर?
3: मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्राइवेट सीटें हैं वो 50% गवर्नमेंट फीस पर पे करी जाए, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग हो, स्टेट वाइज काउंसिलिंग ना हो, ताकि हर स्टेट का अलग अलग रैंक ना उठे, तो 50% सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट करी जाए, और बाकी जो स्टेट वाइज काउंसिलिंग होती है उसको बंद करके ऑल इंडिया काउंसिलिंग करी जाए, ताकि हर बच्चे को, डिजर्विंग बच्चे को कॉलेज मिल सके।
1: ऑन NDTV वी डू नॉट शाय अवे from uncomfortable topics, uncomfortable conversations, because these are conversations that are very much flowing into the larger youth anger that you're seeing here on Jantar Mantar. Young Harsh Dubey, who has become a bit of a viral sensation since his appearance on my show last night, has struck an incredible chord with thousands, I would say millions of people all across the country. Does the fact that he isn't here demanding the specific issue of NEET leaks as a NEET aspirant himself mean that he isn't part of this anger? Well, you've seen his anger and it speaks for itself.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: राजा प्योर मसाला।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Times in the aftermath of the paper leak controversy and further reaffirmed its support for the demand for justice. The government, meanwhile, has accused the opposition of politicizing the issue and perhaps burying the core issue of the students, what they're demanding right now, even as protests, demonstrations continue at Jantar Mantar.
1: What's happening? In solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate. But then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they've put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here. So we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously, they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street.
2: आप देख रहे हैं क्या हो रहा है. हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारी देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है. महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे. जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा. आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं. तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं.
0: Joining me live is now Kanika Katyar. She's joining me live from Delhi. Kanika, aap wahan the jab LOP Rahul Gandhi aur Priyanka Gandhi unke ghar se unne ye march nikala Gandhi Smriti tak. Bataiye aapne kya kya dekha, kyunki ek side se humne dekha hai ki center ne kaha hai ki paper leak ke mudde pe hum sansad mein baat karenge, but dusri side hum dekh rahe hain ki opposition ko bas the education minister ka istifa chahiye.
3: बिल्कुल साफ तौर पर राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, करीबन 120 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया. राहुल गांधी का जो आवास है सुनहरी बाग, वहां से लेकर करीबन जो है 2 किलोमीटर तक जो है गांधी स्मृति तक जो है ऑपोजिशन ने आज प्रोटेस्ट किया और बस में तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचे थे. एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक ने आज करने की कोशिश की, जिसके पीछे जो है एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है. लगातार पेपर लीक को लेकर जो है ऑपोजिशन एक ही डिमांड कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो की एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है फर्दर डिस्कशन और बाकी चीजें होंगी. हालांकि गवर्नमेंट अग्री कर चुकी है इस बात पर कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है. लगातार जो है सरकार ये बोल रही है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन ऑपोजिशन की सिंपल डिमांड है कि फिलहाल अभी उनको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए और इसीलिए आज कांग्रेस और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद थे उन्होंने राहुल गांधी के आवास से लेकर जो है गांधी स्मृति तक प्रोटेस्ट भी किया. राहुल गांधी ने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बुक जो है वो थमी हुई थी, इसके अलावा जो है नेशनल फ्लैग को कैरी किया हुआ था. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है स्टूडेंट्स को, उन तमाम लोगों को, कि वो पेपर लीक में उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है और लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है सरकार को घेरा जा रहा है. लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होगा कांग्रेस इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो करती रहेगी. आज जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें लगातार जो है एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई, एक सिम्बॉलिक मैसेज देने की कोशिश की गई और आने वाले समय में कहा जा रहा है, जो
0: Union Minister Dr. Jitendra Singh has said that the government has sent 4 formal proposals for discussions since yesterday afternoon and described the invitation as open and unconditional. He said that the government is ready to discuss all issues at any time and at any venue convenient to the protesters. According to Dr. Jitendra Singh, both the Union Health Minister J.P. Nadda and he himself, they both are prepared to participate in the discussions, adding that dialogue

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database.

0: sab hua mehenga.
1: So we're here at Jantar Mantar, and as you can see, the singers, the dancers, the artists are expressing themselves in the way that they choose. We've got a lot of students here, lots of protesters. Many of them are no longer students, but they feel a sense of belonging here among this enormous crowd of young Indians, because they are invested in what happens to the future generations. I have with me a group of students here and others, and we'll go to them. Come and join me forward here. One young man here has been leading a group of youngsters and students, and he's been here for many days. There are paintings, there's art happening here. Aapke man mein kya hai? What is on your mind today? The Prime Minister spoke today. He said fast track courts lagayenge is pe. How would you react to that?
2: See, main sirf ek hi baat kehna chahunga ki itne dino baad kyun? Why after so many days they have did this? Otherwise, it should be on the go when the protest has been started. It should be at that time. So many people lost their life because of the need. And after so many days, they are saying, now we will talk about it. So I don't think they are saying they will talk about it, but when it's very late.
1: Okay.
2: Are
1: you a student?
3: Yes.
1: Okay. Why have you come here? What is on your mind today? Faces, eh?
3: Actually, my purpose is I want to ask the our politics, our politicians, ki hume drop mein kya kehte hain, hume drop lena chahiye ki nahi. If you are playing like that, our future, so why we take drops? Why we waste our years to years, back to back? And if you are not giving that, to so resign kar do aap wahan se, apne pas se resign kar do. Aur agar aap resign nahi kar sakte, to hum ye protest जारी रखेंगे तब तक एट द एंड जब तक आप यू शुड नॉट टर्मिनेट द पॉलिटिक्स और सिस्टम.
1: ओके, द कॉल हैज बिकम कम हियर फॉर धर्मेंद्र प्रधान द एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर एक इमोटिव इशू बन गया है कि अनलेस ही रिजाइंस नथिंग कैन मूव फॉरवर्ड. You agree with that?
4: I absolutely agree with it. Even I have lost my very close friend 2 months ago for due to suicide.
1: You lost a friend?
4: He was my very close friend, and he did committed suicide due to his studies and education kind of pressure. So I am very emotionally attached to this protest, and I am really going through it right now.
1: आपको क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो demands रखे गए हैं सामने अभी? आप भी एक स्टूडेंट है या स्टूडेंट थी, आपका क्या डिमांड है?
5: देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है, उनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीज़ों को लेकर के लड़ सकता है, पर यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, तो वो उनको इस्तीफ़ा देना होगा. वो इस्तीफ़ा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो सारे लोग फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, और एक दिन से नहीं, कई दिन से बैठे हुए हैं.
2: I'll tell you one thing. मैं एक बात बताता हूँ, आपको क्लियर करना चाहता हूँ. यहाँ पे जो भी बैठा है, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है, if he is a student or not, we are here for the change. हम बदलाव के लिए आए हैं. हजारों स्टूडेंट अपनी जान लगा रहे हैं. ये स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ. यहाँ पे हम क्यों हैं? यहाँ ये भी
6: मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, और हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 3-4 दिन हो गए. इन लोगों ने नेटवर्क बंद कर दिया है कि घर तक फोन ना करें हम लोग. नेट बंद है, वीडियो नहीं जा रही है, कॉल तक नहीं लग रही है. ये लोग कैसे भी डरा ले, पर हम नहीं डरेंगे. चाहे कुछ भी कर ले, हम यहीं लगाए रहेंगे, यहीं रहेंगे.
2: एक बात

0: दे एक मिनट रुको। दिल्ली पुलिस ने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी हो, आप स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे एक अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट से डिमांड रखने आए हैं और आपकी बड़बड़ता ये है कि आप हमें लठ मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम इस देश के युवा हैं, हम इस देश का मुस्तकबिल हैं और हमारे ऊपर ये सलूक हो रहा है कि हमें एक
1: मैडम आइए
0: क्या समझा रखा है
2: महिलाओं को, तो बड़बड़ता के साथ उन्होंने पूछा है।
1: दिस यंग लेडी हैज ब्रॉट हर लिटिल चाइल्ड हियर, हू इज हियर, ओके, एंड लेट मी होल्ड हिम। He's a little guy here who's come up here and he's holding a placard of his own. So a little boy here with his mother. Let's talk to his mother. Benji, aap kyon aaye hain yahan par? Aapka kya message hai government ko, sarkar ko? Aapka chhota bachcha hai.
3: मैं इसलिए आई हूँ, हम सब तो पढ़े लिखे हैं और ये अभी जो लड़ रहे लड़ाई है इन लोगों के लिए, इनका फ्यूचर बहुत ख़राब होगा और ये चलता रहेगा। अगर अभी नहीं रुका ये तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये नीट का पेपर बहुत टाइम से चलता आ रहा, लीक। अरे मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो रेंट में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, बार बार लीक का पेपर ये झेलेंगे। लोग मर रहे, अलग अलग से मर रहे, फांसी लगा के मर रहे, रोड पे मर रहे, घर पे मर रहे, तो क्या मरेंगे? इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी है। तो फ्यूचर किसके पास है? मोदी के पास है। इसलिए मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चे का फ्यूचर मोदी के पास है। मोदी इस्तीफा दो।
1: ओके, सो द एंगर हियर, द मैसेजिंग हियर, द इमोशंस हियर cannot be, you can't misinterpret it. You can have a view of it. You can say that there are people who have different views, divergent views, colored views, political views. But these are views that are deafeningly loud. And they can't be simply, swept under the carpet. By getting you a sample of the voices that we've seen here at Jantar Mantar, I think the issue, which I don't even need to communicate anymore, is that the rules of engagement have completely changed. Everywhere we walk here at Jantar Mantar, there are voices, there are sounds, and there are people. Here again, you can see a small little Nukkad Natak happening here. Impromptu messaging that's taking place. There you got it. Yeah. Here they're talking about lathi charge and alleged excesses of the Delhi police. Many of those things caught on camera as well. Former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti ji, is here with us. She was on stage just a moment ago. You're looking at this huge crowd, madam. Your first impressions of this incredible amount of youth anger? This is very real. There have been allegations aplenty of politicization, etc. But this is very real. I've just been in the crowd and I've just come out of it.
4: I think this is real India. ये वो हिंदुस्तान है जिससे हम कश्मीरियों ने हाथ जोड़ा है. They are the India. They are the future of our country. और इनको चीट करना, इफ एनीबडी ट्राइज टू चीट देम, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे इन पावर फॉर अ लॉन्गर पीरियड. सो दे आर द वंस हु आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू ब्रेक द फियर साइकोसिस अमंग पीपल, बिकॉज दे आर द पीपल हु विल बिल्ड दिस नेशन फॉर आवर फ्यूचर. दे आर द वंस हु आर गोइंग टू स्टॉप दिस यू नो destruction of our constitution, democracy. They are the ones. They are the power.
1: Abhijit Dibke is also here. He's just arrived.
4: Whatever we can do, please let's know. We are there for
1: let's
4: you.
1: Let's bring this a little closer.
4: Means, for the first time after 5th August, our people are, they are beating, their heart is beating for you people.
5: Thank you so much.
4: So all the best for you.
5: Thank you.
4: May God give you success in this, whatever you are doing at this point of this protest, and you go home with flying colors.
5: Thank you so much, ma'am.
1: Abhijit, we heard you're not well. You're back here. How are you doing?
5: I have fever and too much weakness, but yeah, I got to be here because so many people are coming from different parts of.
1: Okay, we've just been in the crowd right now. We've been speaking to a lot of people here. The Prime Minister spoke today. You heard the words that he said about the fast track courts. How are you reacting to that? Is that a beginning of some engagement, or is it the resignation of the Education Minister that is the starting point?
5: That was a really vague tweet without any concrete action against the real culprit, that is Dharmendra Pradhan. Our demand is very simple and clear that the Education Minister must resign, and no more blood should be shed at Jantar Mantar to protect Dharmendra Pradhan, who is already responsible for the death of more than 20 students.
1: Are there any talks happening right now? Is there a channel of communication that's open right now between your side and the government? One meeting has already taken place. There is a lot of confusion about whether talks are happening towards some kind of an end game on this.
5: Well, they did invite us for talks, I think yesterday or day before yesterday. But what they did last time, that they invited us to have talks and they made Saurav and Ashutosh sit for 5 hours, and in those 5 hours they spoke only for 10 minutes, and we don't want to do that anymore because they were just wasting our time. So if the government wants to have a talk, it won't be happening at any of the minister's house. It will either happen at Jantar Mantar or at any neutral location.
1: Has the government said anything about that demand of yours, that if any talks happen, they can happen at a neutral location or here at Jantar Mantar?
5: No, they called off the talks after that.
1: So as of now, there is no talks on the table. Is there any contact between the government and you at this point of time?
5: No.
1: So what is the next step then? We've seen protests happening in other parts of the country as well. What is the next step as far as this is concerned?
5: I think it will be better for the government if they listen to the people, because right now it's not just Jantar Mantar. There are protests going on in Mumbai, Nashik, Mizoram, Jaipur, Madhya Pradesh, Bangalore. I mean, across all India. So if so many people in lakhs of numbers are demanding a resignation of the minister, I don't understand why is it such a big problem for Narendra Modi to sack one education minister. One education minister cannot be more important than lakhs of students.
1: Has Dharmendra Pradhan become symbolic? Because there are people who say that uska jaane se kya hoga, somebody else will come in his place. But, or is it about a signal that this sends out as far as accountability is concerned?
5: Yeah, that's right. It's about fixing the accountability. Whoever comes after Dharmendra Pradhan, he will know that if he messes up, if the paper leaks happen, or if any single student commits suicide, his chair won't be safe.
1: There are pictures that have come out, Abhijit, of Dharmendra Pradhan from 30 years ago protesting against paper leaks in Orissa, and those pictures of him getting injured there. What did you think when you saw those pictures? The same minister all those years ago protesting against paper leaks.
5: I think then he should join us at Jantar Mantar.
1: If Dharmendra Pradhan decides to come here, would you welcome him?
5: Of course, we would welcome him. We will also prepare his resignation letter. All he will need to do is sign it.
1: Okay. Thanks, Abhijit. Abhijit Dibke, who was apparently unwell, so he missed most of today, and he's here finally once again. There is a person looking like Gandhiji who has also appeared. And I saw a meme earlier on the internet today saying that if even Gandhi has come here, then you know that these people are here are serious. But the energy is only rising here at Jantar Mantar. And the crowds that both Mehbooba Mufti and Abhijit Dibke were referring to are these crowds. These are the people that they're actually talking about. So you can choose to dismiss it. You can say these are not real crowds and this is not organic. But in speech after speech that's going on stage, and the reactions from the people off stage is not something that you can puppeteer. At a time when people are cynical, people wonder about stage-managed events, etc. I'll let you hear it for yourself. Well, last night on India Matters, a young student who has taken NEET multiple times has become one of our most viewed segments all year. Harsh Dubey is a student who's taken NEET. And yesterday, you've seen it on the show because it's got millions of views and gone completely viral. Harsh, aap aa gaye ho aaj hamare saath is protest mein. Kya kehna chahenge? What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday, which everybody is now talking about.
6: देखो, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहें? हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई, सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है, 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा। आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे, मेरा क्या होगा, मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या, मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या, धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी, मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे। ये मेरे दिमाग में तब आता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ चुके हैं, जब लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है तब एक बच्चा कर पाता है उसको अटेम्प्ट, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है, इस चीज को कौन देख रहा है, सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, धन में क्यों दे इस्तीफा, उसका रीजन बताएं आप लोग बैठ के यहाँ, रीजन ये है कि वहां पर सीटें नहीं है, रीजन ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते दिन रात और क्लास के टॉपर होते हैं, पूरी लाइफ टॉप रहते हैं अपने क्लास में, लेकिन आज जो बच्चे SSC में चले गए उनके पास सैकड़ों ऑप्शन है लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नीट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ का सिलेबस हो, सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ नीट छोड़ दे तो किसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आता है, क्या कुछ हमारे पास और ऑप्शन नहीं होने चाहिए?
1: क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है रिजर्वेशंस और जो मुद्दे आपने उठाए अभी उसको लेकर चर्चा करे, डिसीजन ले रिजर्वेशन को लेकर
6: करे, सब लोग कोई चर्चा कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ये चिल्लाने से क्या ये चर्चा हो रही है, क्या इस पर चर्चा करो कि भाई क्यों इतना सारा है, हर स्टेट को हर कॉलेज को आप रिजर्व कर रखिए, क्यों जिसके पास मर्सिडीज है वो गरीब और मैं, मेरे पापा किसान है मैं अमीर हूँ, मेरे पापा खेती में काम करते हैं मैं अमीर हूँ, जिसके पास मर्सिडीज अगर उसके आगे 80 लिख गया तो वो गरीब है, इस बात पर कौन बात कर रहा है यहाँ, मैं आधे घंटे से आया हूँ सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ,
7: जो बदतमीजी हो रही
6: है, बदतमीजी क्यों हो रही है, गलत काम कर रही है, गलत काम कर रहे हैं,
7: सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम,
6: इन सभी पॉइंट्स को उठाया जाए, गलत मुद्दों, हमें जो बच्चे बच गए हैं जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए कम से कम उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उन बच्चों के न्याय की मांग कौन कर रहा है।
1: कल के वीडियो के बाद हर्ष आपको बहुत सपोर्ट मिला है, आपने जो बोला है वो सेगमेंट पूरा का पूरा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वायरल हो चुका है NDTV के प्लेटफॉर्म से, उसके बाद क्या क्या कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं, क्या लोग आपके पास आ रहे हैं बोल रहे हैं कि इसको लेकर एक मोर्चा खड़ा कर दो, इसको लेकर प्रोटेस्ट करो,
6: लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसको लेकर प्रोटेस्ट करो, रियल मुद्दों पर बात करें, हम हमारे पास सारे रियल मुद्दे होने चाहिए,
1: लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये आप नहीं मानते हैं जो यहाँ पे हो रहा है।
6: हाँ बिल्कुल, रिजाइन दे, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, अगर एक बाप के दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा, मेरे दो बच्चे सुरक्षित बचे रहे, वो ये नहीं चाहेगा कि इन दो बच्चों के पीछे पूरी जान फूंक देगा, वो चाहेगा हमारे दो बच्चे बच गए पहले इनको देखूंगा मैं, उस पर बात करो, आप पॉइंट्स उठाओ, भाई अभी कौन आया था, कोई मुख्यमंत्री आई थी, भाई मुझे बोलने का मौका दो, प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुख्यमंत्री से मुझे क्या मतलब है, मोदी से मुझे क्या मतलब है, क्या मतलब है मुझे,
1: लोग
6: मुझे
1: जो लोग दिलाओ हर्ष, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है उनमें हिम्मत नहीं है इस मुद्दे को उठाकर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करें।
6: प्रॉब्लम ये है ना गवर्नमेंट,
1: वो कहते हैं, ये क्या आप अग्री करते हैं उसको लेकर?
6: हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है,
1: उनको तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा,
6: तो आप सीटी डबल करो कैसे कर सकते हैं, सुनो क्या एक बच्चा जो आज 4 साल बाद कॉलेज से निकलेगा कि नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी करेगा, नाइट में भी ड्यूटी करेगा, तो क्या वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में पढ़ नहीं सकता है, सारे कॉलेज अगर 2 शिफ्ट में कर दी जाएगा डायरेक्ट डबल सीट हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ हॉस्टल बनवाने हैं, सिर्फ हॉस्टल बनवाने, उसी क्लास में उसी बेंच में उसी लाइब्रेरी में उसी बॉडी पे वही बच्चा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है वही बच्चा शाम को कर रहा है, क्या डबल सीटें हो जाएंगी तुरंत, जो बच्चा आज के 4 साल बाद 24 घंटे की ड्यूटी देगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर लेगा, वो क्या 4 साल पहले अपनी अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट करने के लिए दिन और रात में नहीं पढ़ाई कर पाएगा?
1: तो आप क्या बोलेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं अभी, उनका ध्यान अभी जंतर मंतर पर है, जहां पर
6: इसीलिए तो जंतर मंतर
1: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो को लेकर वो है डोमिनेंट नारा यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर। आप एक नीट स्टूडेंट हैं, तो ये जो आप जो रेज कर रहे हैं वो मुद्दा वो

0: सामने कैसे आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, ऑपोजिशन को भी पता है कि ये मुद्दा क्या है। ये तो सालों से पता है कि ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है। वो नहीं उठाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर?
1: तो मुझे भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बट मैं तभी साथ दूंगा जब रियल मुद्दों पर बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही कि वो उसका बहुत छोटा पार्ट है, हम इसको सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं और रियल मुद्दों को छोटा बना रहे हैं।
2: रियल मुद्दा है क्या?
1: रियल मुद्दा ये है कि बच्चों को सीटें मिले, गवर्नमेंट की डबल सीटें हो जाए, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है?
0: तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अगर आप आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि समवेयर इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, जो इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी आवाज सुन रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं मोर्चा खड़ा कर दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, है ना? आपने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अगर आपको रिजर्वेशन देना है, आप स्टेट वाइज दे रहे हैं, आप कॉलेज वाइज दे रहे हैं, कास्ट वाइज दे रहे हैं, गरीबों को रिजर्वेशन दो भाई। एक बच्चा जो जिसका पापा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से, क्या उसका पापा क्या, उसको भी तो कॉलेज मिलना चाहिए। आप गवर्नमेंट की डबल सीटें करो। अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, जैसे एमपी में प्राइवेट सीटों पे, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे करती है 50%, क्या ये ऑल इंडिया में नहीं हो सकता? ये काम ऑल इंडिया में हो सकता है, 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, ताकि उन बच्चों को भी, जो गरीब बच्चे भी हैं, जो वो भी उस कॉलेज में जा सके।
0: अभी अभी रिसेंटली वो UGC गाइडलाइन सामने आए थे, उसको लेकर काफी गुस्सा था पब्लिक में, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर? आपको क्या मैसेज आता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग किस दिशा में जा रही है?
1: गवर्नमेंट जो है रियल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो बहकाती है। जैसे भाई साहब हमारे ये है कि हमारे ऊपर चढ़ जा रहा है, नीट का पेपर हमने दिया, इन्होंने दिया नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम पता है नीट में? क्या प्रॉब्लम है जरा पूछिए आप।
3: नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि बच्चों, गरीब किसान के बच्चों को या गरीब मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो चीज के लिए
1: किसी को नहीं, मतलब सबके साथ बराबर होना चाहिए, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
3: EWS इसके लिए सरकार ने बनाया तो है,
1: EWS हमें नहीं मिलता, हमारे लिए नहीं मिलता।
3: आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते नहीं हो अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग?
4: मुद्दा ही नहीं है ना यहाँ पे, मुद्दा इस्तीफा है ना,
3: और पेपर है।
4: कितने साल से पेपर लीक हो रहा है?
3: रेस्पॉन्सिबल
4: धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले की सरकार में होती थी जब हमने आपको लाया ना।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: वही चीज कहोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा ना?
1: अब यही बात आप समझ नहीं रहे हो। एक सेकंड, अरे सुनिए,
4: आपके रिजर्वेशन के बारे में एक टाइम तक ना, जो मैं बताता हूँ, एक टाइम को जब लोगों को ना कैसे कैसे हालत में रखते थे, उनको मिलना चाहिए भाई, प्रॉपर मिलना चाहिए। आप कभी, मैं बता,
3: अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, तो उस चीज के
4: उनके साथ कैसा भेदभाव होता है ना? कभी आप गांव में जाओ, आप गांव के नहीं हो, मैं गांव का हूँ, ठीक है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है वो चीजें कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, कैसे उनको नीचे बैठाया जाता है, कि चाय आप वहाँ पियो या कप में पियो, ऐसे ऐसी चीजें होती है। हम इस्तीफा होता हूँ, ऐसे क्या सरकार में वो है कि ईगो पे आ रखा है कि हम इस्तीफा नहीं दे सकते?
1: इस्तीफा दे, आप ये मुद्दा छोटा मुद्दा है, इस्तीफा तो दे, वो छोटा मुद्दा है। आप ये बताओ, आपके गांव में बहुत सारे गरीब है, ठीक है, कितने 80-80 MBBS है आप बताओ?
4: बहुत सारे हैं भाई
1: आपके गांव में,
4: बहुत सारे हैं
1: आपके गांव में, 80-80 MBBS है।
4: आप कभी,
1: मेरे गांव में एक भी नहीं है।
4: क्या चीज MBBS की बात?
1: एक भी 80-80 MBBS नहीं है
4: भाई, है हमारे गांव में बहुत है, हमने देखा भाई भेदभाव।
0: ओके,
4: सो हमने
0: दिस इज,
4: और ऐसा नहीं है सर, एक मिनट में बोल, ऐसा नहीं है भाई, देखो अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी, सुनो, अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है,
3: पता चलेगा कि सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है।
1: मैं कह रहा हूँ इस्तीफा दे।
0: ओके
4: भाई, मैं आपको बता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए?
0: लास्ट वर्ड हर्ष, फाइनल वर्ड जो आप गवर्नमेंट को बोल, भाई एक सेकंड, लास्ट वर्ड आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर?
1: मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्राइवेट सीटें हैं वो 50% गवर्नमेंट फीस पर पे करी जाए और ऑल इंडिया काउंसिलिंग हो, स्टेट वाइज काउंसिलिंग ना हो, ताकि ताकि हर स्टेट का अलग अलग अलग अलग रैंक ना उठे। तो 50% सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट करी जाए और बाकी जो जो स्टेट वाइज काउंसिलिंग होती है उसको बंद करके ऑल इंडिया काउंसिलिंग करी जाए ताकि हर बच्चे को, डिजर्विंग बच्चे को कॉलेज मिल सके।
0: ऑन NDTV वी डू नॉट शाय अवे from uncomfortable topics, uncomfortable conversations, because these are conversations that are very much flowing into the larger youth anger that you're seeing here on Jantar Mantar. Young Harsh Dubey, who has become a bit of a viral sensation since his appearance on my show last night, has struck an incredible chord with thousands, I would say millions of people all across the country. Does the fact that he isn't here demanding the specific issue of NEET leaks as a NEET aspirant himself mean that he isn't part of this anger? Well, you've seen his anger and it speaks for itself.

0: Anand can set up another tent. And then he can do that. Or
1: your tent is only to demand.
2: पर यही है ना जेएनयू से बीजेपी का जॉइंट एनसीआरए से डर रहे क्या?
0: Okay, let's just as Anand said, I said that yeah, I demand the resignation of all.
2: Okay, but what is lady and what is the hidden agenda?
1: आप डर के मारे बोल रहे हो?
0: No, no. हाँ, डर किसे?
1: केजरीवाल से क्यों डर रहे थे भाई?
0: Why would I be afraid of anyone? विजेता is an independent guy. विजेता is not afraid of anyone.
2: Answer the question. बताइए.
0: Even after this authority, I'm not afraid of anyone.
1: This lady. Just 10 seconds. This lady, wonderful lady, was following CJP. Do you want the resignation of Harjot Singh and Bangarappa?
3: Yes.
1: There you go.
0: So I am also saying it.
1: One second. Do you think, is there any bite of CJP, any leader, including Vijeta, no, that demands the resignation of Bangarappa?
2: Sir, yes or no? Is there any bite? It is not about CJP. It is about the issue of education.
0: Yes, exactly.
2: And as a government, as a student, we expect the government to start from the top.
1: Yes.
2: We expect the leadership. We expect the current government will do start from the
1: current
2: top, and
1: Karnataka
2: that will
1: Karnataka government.
0: It is
2: any current government.
1: Current central government.
2: Any current government.
1: Why are you sparing some people? That's the only. Simple question.
0: Anand, people are tired of this BJP Congress.
2: People are tired of this rhetoric. Ma'am, tell me.
0: Let things get to somewhere.
2: I am Twinkle and I graduated MBA from IIM Raipur and did my bachelor's in economics from Symbiosis Pune.
4: So, you know, I think what Twinkle is trying to say, what she is saying, Harshvardhan ji, ki सरकार केंद्र सरकार से शुरुआत कीजिए ना पहले धर्मेंद्र प्रधान लेट हिम सेट एन एग्जाम्पल एंड से आई टेक अकाउंटेबिलिटी एंड टुमारो देन ट्विंकल विल गो बैक टू जंतर मंतर एंड से कि हरजोत जी अब आप भी लीजिए अकाउंटेबिलिटी क्या ये मांगना गलत है
0: ट्विंकल आज कह रही है
4: शुरुआत केंद्र से कीजिए देन द डोमिनोस विल स्टार्ट ओके ओके वन क्वेश्चन एट अ टाइम
0: What more do you want to hear?
4: One at a time, please. Just a second. Harshvardhan ji. Dharmendra Pradhan shuruaat kare. Harshvardhan ji.
5: ट्विंकल आपने नाम बताया ना बिल्कुल जो ट्विंकल कह रही है मैं उनके साथ खड़ा हूँ
3: डेफिनेटली थैंक यू सर
5: इनके ऊपर सवाल नहीं है ना सवाल उस मूवमेंट पर है जो कॉकरोचेज के नाम पर वहां इकट्ठा किया गया जो तंबू लगाया गया है उस पर सवाल है और एक मिनट मैंने आपकी बात सुनी लेट मी कंप्लीट जब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो सीजीआई की एक टिप्पणी एक कमेंट ऐसा था जिस पर लोगों को लगा कि ये यूथ के ऊपर है उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया तो ये नीट पर गए अगर नीट पर गए तो रीट पर क्यों नहीं गए अगर रीट पर गए तो पंजाब पर क्यों नहीं गए अगर पंजाब पर गए तो ये कहीं नहीं गए क्योंकि ये मूवमेंट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का मुखौटा आंदोलन है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की साख पूरी तरह से दिल्ली में खत्म थी उनको समझ में नहीं आ रहा था दिल्ली कैसे आए मुंह छिपाकर पंजाब में थे ये रास्ता अपना बच्चों को बदलाया गया
3: I think a very important point is now being raised by that lady.
0: Twinkle said something. That paper leaks must be stopped.
4: Just a second. Yeah, Twinkle said something.
6: Sir, as you mentioned, my name is Sanskriti Singh. I am a political science graduate and I am pursuing political science in my master's. Sir, abhi aapne ye bola ki aap us stage ko politicize nahi karna chahte the. Sir, ye pura issue student se hat ke politicize ho chuka hai. No one is talking about the student issues. Kahan pe aapne baat kari? Ek bhi aapne baat kari ki Dharmendra Pradhan ko resign de dena chahiye. Sir, policy reforms ki baat aapne kahan kari thi? Pehle din se aapne ye baat nahi. Nahi sir, maine ek baat nahi dekhi. Sir,
0: of course people have been asking me.
6: इतने दिन से प्रोटेस्ट हुआ एक दिन भी मैंने ये नहीं देखा कि पंजाब में जब हुआ किसी ने एक बाइट दी हो किसी ने नहीं बोला उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए कि पंजाब में भी पेपर लिखे हुए हैं महाराष्ट्र टेट के पेपर लिखे हुए हैं सिर्फ नीट के नहीं
5: पंजाब पुलिस ने बच्चों पर लाठी चार्ज किया
6: किसी ने बात नहीं करी सर ये बात सिर्फ नीट की
0: नहीं
1: था
0: इंटरव्यू
1: लाल
4: चालू था डायरेक्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू तहसीन पूनावाला आल्सो इन एडिशन टू द एग्जांपल्स बीइंग गिवन हियर ऑफ हाउ नो मेंशन वाज मेड ऑफ पंजाब और कर्नाटका द अदर इशू आल्सो इज कि आप कभी किसी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे दिस इज यू नो व्हाट हैपेंस इज जस्ट सेकंड द क्वेश्चन इज टू तहसीन व्हाट हैपेंस इज व्हाट

0: Sir, I'm gaye. I'll be very honest with you. Every time, and now I have no hesitation in saying this. I have no hesitation in saying this. I have no hesitation in saying this, and I will ask that question. I will ask that question to Tehseen, but I want to make an unequivocal statement. Since the beginning of this agitation, everyone on that stage has said mainstream media is not covering us. When we went there, my young colleagues went there. They were heckled. They were harassed. They were called names. They were pushed around. When you keep blaming us for not coming there, sir, we went there in good faith. We stayed there despite you calling us names. But you then went ahead. I'm not saying you in particular or well-meaning students. Some people who were there, they harassed my colleagues, sir. And I will not make my colleagues cannon fodder. Just a second. But that is for Tehseen Poonawalla. Where are the solutions? Just a second. Where are the solutions? Tehseen.
1: I'll give you the solutions. But first of all, thank you guys for coming here. It really means a lot. You guys here, irrespective of which side of the fence you all are, we are all here for Team India. Now the point is, I'll give you the solution. I don't know if you all will carry the solution. Number one, ask Padmaja, ask this question. Not you, journalists. Why the F do Netas' kids study abroad and in private schools? Why not in government schools? They are running the system. Why do Babu's kids study in? Why do Babu's kids study abroad and in private schools, not in government schools, if they are running the system? That is the question that it starts from. Number two, why does this great country of ours, where we have professors like Anand, I really respect him, in JNU, and he's actually a very good professor. He's doing some phenomenal work in a great government institution, the JNU. Why do we have coaching classes? Where did this start from? From the coaching classes. Who was Joshi? Who were those people? They were all scamsters associated with coaching classes. Why do each one of you and your families have to send you to coaching classes? It starts from there. Whether this is about Punjab, whether this is about Karnataka, whether it is about Dharmendra Pradhan, the fact is all three names that he took are Nepo kids, whose kids studied abroad. By the way, the kids are studying abroad. You guys are left to rot here. That is where the problem is. Bro, one second. Just give me 10 seconds.
2: And let me, why can every college not be wonderful like IIT and IIM?
3: Sir?
2: Why are the all the you know kids, they are made to fight just for a few seats?
3: No.
2: Why can every college not be
0: Vijayta ji, bachcho ko to baat karne dijiye. Ye jantar mantar banta ja raha hai jahan par sare neta hi bol rahe hain. Bachche wahan bas mook darshak ban karke sunte rehte hain ki manch se aap log kya aa karke chale jaate hain. Let them answer. Yes
3: sir, sunne ki kshamta rakhi, theek hai? Pehli baat hai. Dusri baat hai, I am an advocate. I work in Delhi High Court and Supreme Court.
0: What's your name?
3: My name is Advocate Aditya Sharma. To add to that, I was in jantar mantar. Main 3-4 बारी गया भी, क्योंकि पास में ही है कोर्ट, सारी जगह पास में ही है, तो मैं जाता था, मैं जरूर देखता था क्या क्या चल रहा होता था. जिस दिन जो 20 तारीख की बात थी और उसके पहले भी जो आप सब बातें कर रहे हैं, ये अस्पष्ट है कि ये गवर्नमेंट इशू नहीं, ये गवर्नेंस इशू है. राइट, हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. यहाँ पे हम गवर्नमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की बात कर सकते हैं, आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एट द एंड स्ट्रक्चरली चेंजेस क्या क्या ज़रूरी हैं. NTA को क्यों नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया? राइट, एक वो सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है, वो होना चाहिए था, उससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई कम टू दी प्रोटेस्ट, सर उस दिन कोई लीडरशिप नहीं थी सर हमें बताने के लिए. 20 तारीख को मैं वहाँ था, बच्चे भाग रहे हैं, पता नहीं, इतनी भीड़, अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी. पहली बात, इतने लोग, मैं तो 24 साल का हूँ, मैं दिल्ली ही रहा हूँ. राइट, यहाँ पे सारी मूवमेंट्स यहीं उजागर होती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि इतने बच्चे आज तक नहीं आए यार, कहाँ से आएंगे? और फिर मेट्रो बंद होना, और जो सारी हवा थी, डर का जो माहौल था पूरा, वो दिख रहा था. बट एट दी एंड सारे बच्चे आए, रिस्पेक्ट टू दैट, अपनी आवाज़ उठाने आए. बट एट दी एंड कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किसी को पता ही नहीं चला. राइट, फिर अगेन पुलिस वालों ने बहुत बर्बरदा करी. देर वॉज नो बैचेज, नथिंग, एंड क्योंकि मैंने तो आंखों देखी ही देखा. राइट, सो दैट शुड नॉट हैपन. DK बारसू वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस है जिसमें गाइडलाइंस दी गई है कि पुलिस वाले को किस तरीके से बिहेव करना है. वो बिहेवियर नहीं था और वो गलत था, मैं कहता हूँ. कल दिल्ली हाई कोर्ट में इस बारे में बात भी हुई है. राइट, टू ऐड टू दैट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हम किस तरीके से लाएंगे? जो रीनीट हुआ, मैम, रीनीट में भी एक क्वेश्चन गलत था. मेरी छोटी बहन ने नीट दिया, रीनीट दिया, तो मैं वो देख रहा था कि वो किस फेज में थी. राइट, रीनीट में भी NTA ने एक क्वेश्चन गलत डाला. राइट सर, आप बायोकेमिस्ट्री के हैं, मैंने पूरा आपके काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ. बट एट द एंड अगर उस बॉडी से ही जो रीनीट ले रहा है वो भी क्वेश्चन गलत डाल रहा है, तो यार वो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है.
0: व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट हाउ डू वी सॉल्व दिस?
3: स्टैट्यूटरी बॉडी, लाइक प्लस द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज विच आर देर इन द एनटी आर वेरी लेस राइट. अगर आप सीयूटी ले रहे हो, यूजी पीजी सारे बीएचयू के एग्जाम सारे एक साथ ले रहे हो, तो कम से कम लोग तो बढ़ाओ.
0: सो टेल मी समथिंग, यू हैव गॉट सच क्लियर हेडेड आइडियाज अबाउट दिस, डिड यू फाइंड एनी ऑफ दिस इन द कन्वर्सेशन एट जंतर मंतर व्हेन यू वेंट देयर? इज एनी ऑफ दैट बीइंग
3: रिफ्लेक्टेड? द क्वेश्चन इज टू मी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल I did
0: lawyer saab se panga mat lo bhai.
3: I did not frankly speaking.
0: Oh my god, lady lawyer,
3: slay queen.
0: Go on. Yes,
4: yes I am.
3: Congratulations.
0: I like this dynamic, but go on.
3: Yeah. It's fine.
4: Judge
0: kaun banega ye baat?
1: Main. Chief Justice Padmaja.
0: Please.
1: Tum sab ko jo mere paas samay nahi.
3: Bol dena main.
0: Bataiye. Did you find it reflected?
3: No sir, frankly speaking nahi tha. Wahan pe log the, Sonu Mangchuk ji the, respect karte hain ki hum jo wahan pe chal rahe
2: hain. Initiative.
3: That's why we were there. मैं क्यों गया? क्योंकि यार कोई हमारे लिए आवाज उठा रहा है, right? हमारे कोई सुनने का ही नहीं था, एक आक्रोश था.
2: People can come and add to the discourse. Do you agree with
0: that? Okay, so here is where I come in. Here is where I come in, and I want to get more.
2: No, I am saying we took the initiative. People came and maybe intelligent people like you.
5: I would like to support
2: Mujeta
5: on this.
2: Add to the discourse.
5: Let me speak on it. मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी speakers हैं, no one want to take accountability. आनंद अपनी party को बचाना चाह रहे हैं. They are preventing their party. और मुझे लगता है. मुझे लगता है जब नो वन इज रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी, इसीलिए सीजेपी जैसे कोई चीज अरप्ट हुई विच होल्ड नो सेंस, बट दिस इज व्हाट इज द इरप्शन और फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूथ.
2: ओके, अकाउंटेबिलिटी इज डिमांडेड,
5: बट दे डोंट गिव अप द
2: अकाउंटेबिलिटी. दैट
6: इज व्हाई सीजेपी इज आर बंच ऑफ फ्रेंड्स. ऑल अकाउंटेबिलिटी voted thrice. Okay, I chose BJP in my state assembly, and then we chose BJP in the central assembly as well. The number of questions that we are asking Vijeta right now, or the CJP, this is basically a pressure group which arises on its own. If the same set of questions we would have asked the government in the last 20 days, somebody sitting on hunger strike for 20 days, no MOS. MOS goes for a ribbon cutting ceremony anywhere in Delhi, but nobody could show it up. Nobody, even MP of BJP, could show up to just have a dialogue or conversation. Hence the opposition did, and somebody came, and then you guys having this conversation right now. Yeah.
0: Dr. Anand Ranganathan. Yeah, Dr. Anand Ranganathan.
2: This is where, if that was the case, Mr. Chairman put out a tweet, we owe our students reforms and accountability. And I'm like, dude, resign then. If you owe the students accountability, resign. Okay. They're asking your resignation.
0: So here's the thing. Accountability should be fixed and demanded from everyone. You cannot say that we decide who gets to be accountable and everyone else gets a free run.
7: Very important.
0: One. Dr. Ranganathan, the question of this young boy here, when Manas says, all the questions are for
8: Manas.
0: So Manas is saying all the questions are for CJP. Yes, they had some slip-ups. Yes, there are some questions they need to answer. But government also needs to do a little bit of talking, right? You cannot be like, we are going to sit here and do what we want. These guys need to be put in the dock. Dr. Ranganathan.
7: So first of all, the lady from Aam Aadmi Party, when she... So if you are not from Aam Aadmi Party, why did you presuppose that I am defending my party?
5: You speaking that way, sir.
7: Did I demand Pradhan's resignation?
5: Because we have seen you defending Mr. Pradhan.
7: Give me one example where I'm defending.
5: You're defending, sir.
2: She just said your party, you know it.
7: Give me one example.
5: Let me. आपने बात करी, सर, आपने बात करी कि प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए. मोदी जी ने बात करी कि कोर्ट्स आने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. वेयर इज मिस्टर प्रधान? व्हाई ही इज नॉट स्पीकिंग? आप लोगों ने उनको क्यों पीछे छुपा के रखा? ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर एंड ही शुड.
0: लेट मी जस्ट ले डाउन वन रूल ओवर हियर. लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल फॉर द सिंपल रीजन दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस हियर स्टैंड for principles.
7: No.
0: We are here for principles and
7: all
0: issues.
7: All of us don't stand for principles. Let's not play political correct game out here.
0: All right.
7: Half of the people don't stand for principles.
0: Okay.
7: If they did, they would have said that anyone who commits murder should be hanged, not just one out of three.
5: But let's say Dr. Ranganathan stands for principles. Why not Mr. Pradhan first? All right.
7: Always.
0: All right. So Dr. Ranganathan, now, speaking on principle, let
7: please
0: me
7: allow
0: to answer. I'm coming to the others.
7: Now please allow me, because Manas asked a question. विजेता, आपके पास भी आ रहा हूँ, पहले मानस से बात करूंगा. व्हाट मानस सेड कि सारे क्वेश्चंस आपने सीजीपी के लिए क्यों रखे हैं? ऑन डे वन, ओके, वी बीन आस्किंग मोर क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट. नॉट जस्ट वी, अ लॉट ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स, मोदी वोटर्स, उनके नाम ले सकता हूँ, अजीत भारती, अनुराधा, सो मेनी अदर्स, बट द बीजेपी हैज बीन यू नो एज ए डेफ ईयर्स. जब दंगा होगा, फसाद होगा, एनार्किस्ट आएंगे सड़कों पे, तभी सुनती है. फार्म लॉस का भी यही था, हर चीज में उनका ये. सो इट्स रॉन्ग फॉर यू टू से दैट व्हाई ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग डायरेक्टेड टू सीजेपी. नाउ लेट मी आस्क दिस जेंटलमैन अ सिंपल क्वेश्चन, हु इज के राधाकृष्णन?

0: yes, paper leaks, those 14 have happened on his watch. And yes, some changes have been made. Laws have been brought in various states to try and combat paper leaks. But it is not a foolproof, bulletproof method despite all of those changes. And which is why we should have this conversation.
1: One second. I don't speak either for the Congress or I don't care about it. My limited point is, if the BJP thinks that Congress has done something wrong, nobody stopped the BJP from protesting. They must protest. It is their duty to protest. Don't come here and do whataboutry on these kids and call them up. These are not up kids.
2: Why are the apolitical people not protesting? So why is apolitical?
1: Did the apolitical people go and say, "Apki bar hamari sarkar"? Did they go and say?
0: What do you mean? Hamari apolitical people.
1: For votes.
2: Karnataka puchho. Karnataka ke bachcho ke liye rote kyun nahi ho?
1: And I think
2: Punjab ke bachche nahi hai bachche.
1: I think bachche hai.
2: Punjab ke bachche nahi hai. Unke liye kyun nahi rote?
0: One at a time.
2: Bhaiya kyun bane hue Punjab ke bachcho ke liye?
0: One at a time. Bachche nahi hai.
3: Sare bachche.
2: Sharam nahi aa rahi.
3: Sare bachchon ke liye parliament mein debate kara lo.
2: Sare bachchon ke
3: liye parliament mein debate kara lo.
0: Let me come in here and say one thing. You know, when you say...
2: और से भी कमाई हो सकती है।
1: क्या हो गया अगर वो बारहवीं पास है यार वो?
2: मैं क्या रहूँ?
1: तो क्या हुआ बारहवीं पास है? बेईमान नहीं है वो?
0: Just a second.
1: ये तो है।
0: This young lady will speak, please.
1: उसमें कोई गलत नहीं।
0: This young lady will speak, but before that, I want to take 10 seconds to say, when it is said. Just a second. When you say कि सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, विजेता, one second. When you say that, you know, all of these should be discussed and BJP should do it, but you started by saying that we are here for Team India. So that is why you should speak for all of India, including what happened under Ashok Gehlot, because ये Team India होता है. अब बोलिए, अपना नाम बताइए.
4: Myself Arpita Menaria. I'm an assistant professor and a research scholar. अभी हम लोग सभी डिबेट कर रहे हैं, छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं. क्या हम में से कोई देश की बात कर रहा है? ये वही छात्र है जो इस देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं. हमारे जो पुलिस है, जो कानून को रक्षक जो वहाँ खड़े हो, उनकी रक्षा के लिए भी खड़े हैं वहाँ पर, ताकि प्रोटेस्ट में कहीं उनकी जान हानि को कोई नुकसान ना पहुँचे, उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है. हर राजनीतिक दल से कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा है. वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े, इनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे. जब वो छात्र लाठियां खा रहे थे, तब वो उनके अधिकारों के लिए क्यों नहीं खड़े थे? वो जब मंत्री बनते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का नेता जब मंत्री बनता है, वो शपथ लेता है कि वो देश की गरिमा को बनाए रखेगा, वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेगा. तो जब आज संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जब सड़कें टूट रही है, तो आप वहां पर जाकर जंतर मंतर पर जाकर आप क्यों उन छात्रों को नहीं समझा रहे हो कि इस देश की जनता को
0: नुकसान? वो सारे प्रिंसिपल्स का ख्याल आपको रखना पड़ेगा. दिस इज अ यंग जनरेशन एंड दिस behavior should not be condoned.
5: No, Padamja.
0: By some.
5: Padamja, yeah.
0: Vijeta.
5: See, ever since the beginning, I at least repeated hundreds of times, even Sonam sir, Abhijit, everyone, that, you know, India cannot be like Nepal or Bangladesh. We have to show the way to the world that change can be brought through peaceful resistance. Now, see, the problem what happens is that whenever someone tries to do something, you put such a big scanner, such a big magnifying lens that nobody will even dare to do anything. Of course, it is some people.
0: This is a legitimate magnifying.
5: Not a political party with thousands or.
4: Listen to me. अगर आप leader हैं तो लोग आपको follow करेंगे. जितने लोग आपको join in. CJP को इतने लोग Instagram पर follow कर रहे हैं. क्या उनकी एक बात? अगर वो लोगों से ये गुहार कर रहे हैं कि आप आओ, हम नीट के लिए आपके साथ खड़े हैं, paper leak के मामले में आपके साथ खड़े, सब लोग पीछे हो गए. जब उन्होंने कहा कि इस देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, आप अहिंसा मत फैलाओ, तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? फिर आप लीडर किस बात के? आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी
5: कैसे आपकी बात सुनेंगे? Like in what
4: world?
5: In what world are we living?
4: Follow करना शुरू किया.
0: Ma'am, I
5: see the best I can do.
0: There is a different rule for a pressure group and a political movement. Okay, no. So here's the thing. Okay,
5: sir,
0: Harshvardhan ji,
4: sir, आप मुझे बताएं, आपने अपने social media पे एक भी video बनाई जिसमें आप कह रहे हो कि इस देश की संपत्ति को नुकसान?
5: The anger of students is because of the failure of government.
4: आपने बनाई? मैं राजनीतिक नेताओं को छोड़ देती हूँ.
5: The anger of students is because of the failures of the government. And the problems that happened, it was because of failure of the police.
2: Ek nahi.
4: Sir, anger is
2: abhi bhi agenda leke Harshvardhan ji
5: of the government.

0: All right, we have some breaking news on top of the show. 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns were identified and blocked. Delhi police appeals to students and youth to be wary of such foreign accounts, spreading rumors to mislead the situation. Well, government sources tell us that multiple social media and X handles allegedly operated from Pakistan are now seen actively supporting the ongoing student protest in India. Based on available digital tracking, more than 400 such handles have now been identified, along with approximately 100 Instagram handles as well. Initial analysis also indicates that several of these same accounts were previously active during Operation Sindoor as well, in online campaigns involving anti-India narratives, misinformation and propaganda against Indian security forces. Take a listen to the reactions coming in and what the Delhi police has to say.
1: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है. अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं. उनको ब्लॉक कराया जा रहा है. ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे. उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना. मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए. किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो. याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है.
0: All right, my colleague Anushka is now joining me on the phone line. Anushka, you know, there were a lot of miscreants, unknown people against which FIRs were also filed. But now, Delhi police telling us that there's been a huge crackdown on misinformation, especially from Pakistan's social media handles.
2: Well, that's right, Rahisha. Delhi police on Thursday have gone on to say that it has identified more than 400 Pakistan-linked former, ex-handles and around 100 Instagram accounts that are allegedly attempting to amplify the ongoing student protests in India by spreading misinformation and misleading content. According to Delhi police, preliminary digital analysis indicates that several of these accounts were also active during Operation Sindoor, where they were allegedly involved in online campaigns pushing anti-India narratives, misinformation and propaganda targeting Indian security forces. Now, police have also said that the identified accounts are being blocked and urged the public not to rely on unverified information circulating on social media. Authorities have also appealed to citizens to verify information through official sources and avoid sharing misleading or unconfirmed content. We've also seen how the protest has been going on. Several of the miscreants who had entered the very protest area, we have seen several of the videos that have been surfaced where it can be seen these kind of protests have been going on, and also how the protesters were involved in stone pelting, and several of the police officials and the protesters also who got injured because of this confrontation and the violent clashes that had in fact broken out.
0: Absolutely,
2: earlier.
0: Anushka, because there's a lot of misinformation also doing the rounds on Instagram and various social media handles, and that's the huge message by the Delhi police saying that they should be wary of anti-India social elements online. Well, we have other news coming in. Violence has now erupted near Delhi's Jantar Mantar late night of July 22nd as protests spiraled into clashes with the police. Demonstrators pelted stones at security personnel, leaving a Delhi ACP with a head injury, and another police inspector was assaulted during the violence as well. The police has now responded with a lathi charge to disperse the crowd. Several vehicles were also vandalized in the chaos. Heavy police deployment remains in place around the protest site to prevent any fresh flare-up, and authorities are now monitoring the situation closely. Meanwhile, Sandeep Lamba, who's a senior Delhi police officer who has now come under fire after slapping a woman protester during the July 20th Sansad Chalo march, has now been removed from all security-related duties at Jantar Mantar.
3: हमारा स्टाफ था, उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से तीन चार लोग भाग गए थे, बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे. तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए. तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया, पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भग पाए, पर हमें वापस से पकड़ लिया।
4: जैसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं और हूटिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। उसके सिर से खून निकल रहा था, पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की, उसको एक दो मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी, भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इंपैक्ट्स चालू हो गए। इसमें लात थे, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी।
5: किशोर जी, जब ये आप पर हमला हुआ आप कहाँ से आ रहे थे, क्या कुछ हुआ?
6: सर, मैं हनुमान रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था, जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2,500 की भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था। मैं वर्दी में था तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे। तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा।
0: And your breaking news coming in, the education secretary has now been removed. This of course comes at a time when there's huge protest going on in Delhi over the resignation of the education minister Dharmendra Pradhan. But what we are learning right now is that the education secretary has been removed. Well, India's Ministry of Education is divided into two departments. Each is divided by its own secretary. But the latest coming in is that amid all the protests that's happening in New Delhi over the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan, this is perhaps a neat leak fallout that the education secretary has been changed. Perhaps a first step or in this direction. While the students are demanding accountability and

0: we waste our ears to ears, back to back. And if you are not giving that, तो so resign कर दो आप वहाँ से, अपने पद से resign कर दो. और अगर आप resign नहीं कर सकते तो हम ये protest जारी रखेंगे तब तक, at the end, जब तक आप you should not terminate the politics or system.
1: Okay, the call has become, come here, for Dharmendra Pradhan, the education minister ko lekar ek emotive issue ban gaya hai ki unless he resigns nothing can move forward. You agree with that?
2: I absolutely agree with it. Even I have lost my very close friend 2 months ago for due to suicide.
1: You lost a friend?
2: He was my very close friend, and he did committed suicide due to his studies and educational kind of pressure. So I am very emotionally attached to this protest, and I am really going through it right now.
1: आपको क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो demands रखे गए हैं सामने अभी? आप भी एक student हैं या student थी, आपका क्या demand है?
3: देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीज़ों को लेकर के लड़ सकता है, पर यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, तो वो उनको इस्तीफ़ा देना होगा. वो इस्तीफ़ा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो सारे लोग फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, और एक दिन से नहीं, कई दिन से बैठे हुए हैं.
4: I'll tell you sir, one thing. मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्लियर करना चाहता हूँ. यहाँ पे जो भी बैठा है, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है, if he's a student or not, we are here for the change. हम बदलाव के लिए आए हैं. हजारों स्टूडेंट अपनी जान लगा रहे हैं, ये स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे हम क्यों हैं? यहाँ ये भी
5: मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कॉरपोरेट मजदूर हूँ, और हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 3-4 दिन हो गए. इन लोगों ने नेटवर्क बंद कर दिया है कि घर तक फोन ना करें हम लोग. नेट बंद है, वीडियो नहीं जा रही है, कॉल तक नहीं लग रही है. ये लोग कैसे भी डरा ले, पर हम नहीं डरेंगे. चाहे कुछ भी कर ले, हम यहीं लगाए रहेंगे, यहीं रहेंगे.
4: एक बात,
6: दिल्ली पुलिस ने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं. चाहे कोई भी हो, आप स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे एक अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट से डिमांड रखने आए हैं, और आपकी बड़बड़ता ये है कि आप हमें लट मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर. हम इस देश के युवा हैं, हम इस देश का मुस्तकबिल हैं, और हमारे ऊपर ये सलूक हो रहा है कि हमें एक
1: मैडम आइए
6: क्या समझा रखा है.
1: दिस यंग लेडी हैज ब्रॉट हर लिटिल चाइल्ड हियर, हू इज हियर, ओके, एंड लेट मी होल्ड हिम. He's a little guy here who's come up here, and he's holding a placard of his own. So a little boy here with his mother. Let's talk to his mother. Benji, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आपका क्या मैसेज है गवर्नमेंट को, सरकार को? आपका छोटा बच्चा है.
7: मैं इसलिए आई हूँ, हम सब तो पढ़े लिखे हैं, और ये अभी जो लड़ रहे लड़ाई है इन लोगों के लिए, इनका फ्यूचर बहुत खराब होगा और ये चलता रहेगा. अगर अभी नहीं रुका ये तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये नीट का पेपर बहुत टाइम से चलता आ रहा, लीक. अरे मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो रेंट पे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, अब यार लीक का पेपर ये झेलेंगे. लोग मर रहे, अलग अलग से मर रहे, फांसी लगा के मर रहे, रोड पे मर रहे, घर पे मर रहे, तो क्यों मरेंगे? इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी है. तो फ्यूचर किसके पास है? मोदी के पास है. इसलिए मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चे का फ्यूचर मोदी के पास है. मोदी इस्तीफा दो.
1: ओके, सो द एंगर हियर, द मैसेजिंग हियर, द इमोशंस हियर cannot be, you can't misinterpret it. You can have a view of it. You can say that there are people who have different views, divergent views, colored views, political views, but these are views that are deafeningly loud, and they can't be simply swept under the carpet. By getting you a sample of the voices that we've seen here at Jantar Mantar, I think the issue, which I don't even need to communicate anymore, is that the rules of engagement have completely changed. Everywhere we walk here at Jantar Mantar, there are voices, there are sounds, and there are people. Here again, you can see a small little Nukkad Natak happening here, impromptu messaging that's taking place. Here you got it. Yeah. Here they're talking about lathi charge and alleged excesses of the Delhi police. Many of those things caught on camera as well. Former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti ji, is here with us. She was on stage just a moment ago.

0: go. You're looking at this huge crowd, madam. Your first impressions of this incredible amount of youth anger. This is very real. There have been allegations aplenty of politicization, etc. But this is very real. I've just been in the crowd and I've just come out of it.
1: I think this is real India. ये वो हिंदुस्तान है जिससे हम कश्मीरियों ने हाथ जोड़ा है. They are the India. They are the future of our country. और इनको चीट करना, if anybody tries to cheat them, he is not going to stay in power for a longer period. So they are the ones who are going to bring a change. They are the ones who are going to break the fear psychosis among people, because they are the people who will build this nation for our future. They are the ones who are going to stop this, you know, destruction of our constitution, democracy. They are the ones. They are the power.
0: Abhijit Dibke is also here. He's just arrived.
1: Whatever we can do, please let's know. We are there for
0: let's
1: you.
0: Let's bring this a little closer.
1: Say, I have, you know, for the first time after 5th August, our people are, you know, they are beating, their heart is beating for you people.
2: Thank you so much. Thank you so much.
1: So all the best for you.
2: Thank you so much.
1: May God give you success in this, you know, whatever you are doing at this point of this protest, and you go home with, you know, flying colors.
2: Thank you so much.
0: Abhijit, we heard you're not well. You're back here. How are you doing?
2: I have fever and too much weakness, but yeah, I got to be here because so many people are coming from different parts of
0: the country. We've just been in the crowd right now. We've been speaking to a lot of people here. The Prime Minister spoke today. You heard the words that he said about the fast track courts. How are you reacting to that? Is that a beginning of some engagement, or is it the resignation of the Education Minister that is the starting point?
2: That was a really vague tweet without any concrete action against the real culprit, that is Dharmendra Pradhan. Our demand is very simple and clear, that the Education Minister must resign and no more blood should be shed at Jantar Mantar to protect Dharmendra Pradhan, who is already responsible for the death of more than 20 students.
0: Are there any talks happening right now? Is there a channel of communication that's open right now between your side and the government? You know, one meeting has already taken place. There is a lot of confusion about whether talks are happening towards some kind of a, you know, an end game on this.
2: Well, they did invite us for talks, I think yesterday or day before yesterday. But what they did last time, that they invited us to have talks and they made Saurav and Ashutosh sit for 5 hours, and in those 5 hours they spoke only for 10 minutes, and we don't want to do that anymore because they were just wasting our time. So if the government wants to have a talk, it won't be happening at any of the minister's house. It will either happen at Jantar Mantar or at any neutral location.
0: Has the government said anything about that demand of yours, that if any talks happen, they can happen at a neutral location or here at Jantar Mantar?
2: No, they called off the talks after that.
0: So as of now, there is no talks on the table. Is there any contact between the government and you at this point of time?
2: No.
0: So what is the next step then? We've seen protests happening in other parts of the country as well. What is the next step as far as this is concerned?
2: I think it will be better for the government if they listen to the people, because right now it's not just Jantar Mantar. There are protests going on in Mumbai, Nashik, Mizoram, Jaipur, Madhya Pradesh, Bangalore. I mean, across all India. So if so many people in numbers, in lakhs of numbers, are demanding a resignation of the minister, I don't understand why is it such a big problem for Narendra Modi to sack one education minister. One education minister cannot be more important than lakhs of students.
0: Has Dharmendra Pradhan become symbolic? Because there are people who say that uska jaane se kya hoga, somebody else will come in his place. But, or is it about a signal that this sends out as far as accountability is concerned?
2: Yeah, that's right. It's about fixing the accountability. Whoever comes after Dharmendra Pradhan, he will know that if he messes up, if the paper leaks happen, or if any single student commits suicide, his chair won't be safe.
0: You know, there are pictures that have come out, Abhijit, of Dharmendra Pradhan from 30 years ago protesting against paper leaks in Orissa, and those pictures of him getting injured there. What did you think when you saw those pictures? The same minister all those years ago protesting against paper leaks.
2: I think then he should join us at Jantar Mantar.
0: If Dharmendra Pradhan decides to come here, would you welcome him?
2: Of course, we would welcome him. We will also prepare his resignation letter. All he will need to do is sign it.
0: Okay. Thanks, Abhijit. Abhijit Dibke, who was apparently unwell, so he missed most of today, and he's here finally once again. There is a person looking like Gandhiji who has also appeared. And I saw a meme earlier on the internet today saying that if even Gandhi has come here, then you know that these people are here are serious. But the energy is only rising here at Jantar Mantar. And the crowds that both Mehbooba Mufti and Abhijit Dibke were referring to are these crowds. These are the people that they're actually talking about. So you can choose to dismiss it. You can say these are not real crowds and this is not organic. But in speech after speech that's going on stage and the reactions from the people off stage is not something that you can puppeteer. At a time when people are cynical, people wonder about stage managed events, etc. I'll let you hear it first. Last night on India Matters, a young student who has taken NEET multiple times has become one of our most viewed segments all year. Harsh Dubey is a student who's taken NEET. And yesterday, you've seen it on the show because it's got millions of views and gone completely viral. Harsh, aap aa gaye ho aaj hamare saath is protest mein. Kya kehna chahenge? What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday. Which everybody is now talking about.
3: देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहें। हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांग की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई, सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है। 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा? आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली है। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे। ये मेरे दिमाग में तब आता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ चुके हैं। जब लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है तब एक बच्चा कर पाता है उसको अटेम्प्ट, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। इस चीज को कौन देख रहा है? सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र क्यों दे इस्तीफा, उसका रीजन बताएं। आप लोग बैठ के यहाँ रीजन ये है कि वहां पर सीटें नहीं है। रीजन ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते दिन रात और क्लास के टॉपर होते हैं, पूरी लाइफ टॉप रहते हैं अपने क्लास में। लेकिन आज जो बच्चे एसएससी में चले गए उनके पास सैकड़ों ऑप्शन है लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नीट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ का सिलेबस हो? सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ नीट छोड़ दे तो किसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आता है? क्या कुछ हमारे पास और ऑप्शन नहीं होने चाहिए?
0: क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है रिजर्वेशंस और जो मुद्दे आपने उठाए अभी उसको लेकर चर्चा करे, डिसीजन ले रिजर्वेशन को लेकर?
3: सब लोग कोई चर्चा कर कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ये चिल्लाने से क्या ये चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा करो कि भाई क्यों इतना सारा है? हर स्टेट को, हर कॉलेज को आप रिजर्व कर रखी है क्यों? जिसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है और मेरे पापा किसान है, मैं अमीर हूँ। मेरे पापा खेती में काम करते हैं, मैं अमीर हूँ। जिसके पास मर्सिडीज है अगर उसके आगे 80 लिख गया तो वो गरीब है। इस बात पर कौन बात कर रहा है यहाँ? मैं आधे घंटे से आया हूँ, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।
4: जो बदतमीजी
3: क्यों हो रही है? गलत काम कर रहे हैं, यही तो गलत काम कर रहे हैं।
4: सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम?
3: इन सभी पॉइंट्स को उठाया जाए, गलत मुद्दों। हमें जो बच्चे बच गए हैं, जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए कम से कम उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। उन बच्चों के न्याय की मांग कौन कर रहा है?
0: कल के वीडियो के बाद हर्ष आपको बहुत सपोर्ट मिला है, आपने जो बोला है वो सेगमेंट पूरा का पूरा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वायरल हो चुका है एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद क्या क्या कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं,
5: बोल रहे कि इसको लेकर एक मोर्चा खड़ा कर दो, इसको लेकर प्रोटेस्ट करो।
3: हाँ, लोग कह रहे कि भाई आप इसको लेके प्रोटेस्ट करो, रियल मुद्दों पर बात करें, हम हमारे पास सारे रियल मुद्दे होने चाहिए।
5: लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये आप नहीं मानते हैं जो यहाँ पे हो रहा है?
3: हाँ बिल्कुल, रिजाइन दें, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर एक बाप के दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा, मेरे दो बच्चे सुरक्षित बचे रहे? वो ये नहीं चाहेगा कि इन दो बच्चों के पीछे पूरी जान फूंक देगा, वो चाहेगा हमारे दो बच्चे बच गए, पहले इनको देखूंगा मैं, उस पर बात करो, आप पॉइंट्स उठाओ। भाई अभी कौन आया था, कोई मुख्यमंत्री आई थी, भाई मुझे बोलने का मौका दो, प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुख्यमंत्री से मुझे क्या मतलब है, मोदी से मुझे क्या मतलब है, क्या मतलब है मुझे?
5: लोग,
3: मुझे
5: जो लोग
3: दिलाओ
5: हर्ष, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है, उनमें हिम्मत नहीं है इस मुद्दे को उठाकर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करें।
3: प्रॉब्लम ये है ना गवर्नमेंट,
5: वो कहते हैं ये, क्या आप अग्री करते हैं उसको लेकर?
3: हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है रियल।
5: उनको तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा?
3: तो आप सीटी डबल करो, कैसे कर सकते हैं? सुनो, क्या एक बच्चा जो आज 4 साल बाद कॉलेज से निकलेगा कि नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी करेगा, नाइट में भी ड्यूटी करेगा, तो क्या वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में पढ़ नहीं सकता है? सारे कॉलेज अगर 2 शिफ्ट में कर दी जाए, डायरेक्ट डबल सीट हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ हॉस्टल बनवाने, उसी क्लास में, उसी बेंच में, उसी लाइब्रेरी में, उसी बॉडी पे, वही बच्चा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, वही बच्चा शाम को कर रहा है, क्या डबल सीटें हो जाएंगी तुरंत? जो बच्चा आज के 4 साल बाद 24 घंटे की ड्यूटी देगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर लेगा, वो क्या 4 साल पहले अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट करने के लिए दिन और रात में नहीं पढ़ाई कर पाएगा?
5: तो आप क्या बोलेंगे, जो डिसीजन मेकर्स हैं अभी, उनका ध्यान अभी जंतर मंतर पर है, जहां पर
3: इसीलिए तो जंतर मंतर
5: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 2 को लेकर वो है डोमिनेंट नारा यहाँ पर, नीट पेपर लीक को लेकर। आप एक नीट स्टूडेंट है, तो ये जो आप जो रेज कर रहे हैं वो मुद्दा, वो सामने कैसे आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, ऑपोजिशन को भी पता है कि ये मुद्दा क्या है, ये तो सालों से पता है कि ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, वो नहीं उठाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर?
3: तो मुझे भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बट मैं तभी साथ दूंगा जब रियल मुद्दों पर बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही कि वो उसका बहुत छोटा पॉइंट है, हम इसको सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं और रियल मुद्दों को छोटा बना रहे हैं। रियल मुद्दा ये है कि बच्चों को सीटें मिले, गवर्नमेंट की डबल सीटें हो जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है?
5: तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अगर आप आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि समवेयर इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, जो इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी आवाज सुन रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं मोर्चा खड़ा कर दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, है ना, आपने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे?
3: मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अगर आपको रिजर्वेशन देना है, आप स्टेट वाइज दे रहे हैं, आप कॉलेज वाइज दे रहे हैं, कास्ट वाइज दे रहे हैं, गरीबों को रिजर्वेशन दो। भाई एक बच्चा जो जिसका पापा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से, क्या उसका पापा क्या, उसको भी तो कॉलेज मिलना चाहिए। आप गवर्नमेंट की डबल सीटें करो। अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, जैसे MP में प्राइवेट सीटों पे, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे करती है 50%, क्या ये ऑल इंडिया में नहीं हो सकता? ये काम ऑल इंडिया में हो सकता है, 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, ताकि उन बच्चों को भी, जो गरीब बच्चे भी हैं, जो वो भी उस कॉलेज में जा सके।
5: अभी रिसेंटली वो UGC गाइडलाइन सामने आए थे, उसको लेकर काफी गुस्सा था पब्लिक में, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर, आपको आपको क्या मैसेज आता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग किस दिशा में जा रही है?
3: गवर्नमेंट जो है रियल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो बहकाती है। जैसे भाई साहब हमारे ये है कि हमारे ऊपर चढ़ जा रहा नीट का पेपर, हमने दिया इन्होंने दिया नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम पता नीट में क्या प्रॉब्लम है, जरा पूछिए आप।
6: नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि बच्चों, गरीब किसान के बच्चों को या गरीब मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो चीज़ के लिए
3: किसी को नहीं, मतलब सबके साथ बराबर होना चाहिए, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
6: और ईडब्ल्यूएस इसके लिए सरकार ने बनाया तो है,
3: ईडब्ल्यूएस हमें नहीं मिलता।